सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज रविवार है। शक सम्वत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 मई सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: समाचार अब दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: And also infrastructure development that has happened.
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है

0: उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। महात्मा गांधी का कथन है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि ये एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे मातृवंदना, और आइए अब सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज़ में मीराबाई रचित ये भजन।

यह भजन आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल कन्हैया का लिखा भक्ति गीत, जिसे स्वर दिया है अंजलि जैन ने।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज का विषय है आशा तत्व। स्वर है श्री दामोदर शास्त्री का।
1: समस्त भौतिक समृद्धि के होते हुए भी आज मानव स्वयं को पूर्णतः सुखी अनुभव नहीं करता। शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान भी सुख व शांति के लिए बेचैन देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है? भारतीय ऋषियों ने बताया है कि हमारी अशांति एवं दुख परंपरा का कारण यह है, हमारा अपने स्वयं के विषय में अज्ञान। महान ऋषि चाणक्य ने कहा है, पठन्ति चतुरो वेदान धर्म शास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा। तात्पर्य यह है कि चारों वेदों तथा अनेक धर्म ग्रंथों में पूर्ण पांडित्य प्राप्त करने के बाद भी लोग आत्म तत्व के विषय में प्रायः अज्ञान।

नहीं बने रहते हैं, उनकी तुलना उस कड़छी या चम्मच से की जा सकती है जो खीर आदि स्वादिष्ट व्यंजनों में डूबी रहकर भी उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर पाती। यह अज्ञान क्या है, इस संबंध में अध्यात्म रामायण में कहा गया है, देहोहमितिया बुद्धि अविद्या सा प्रकीर्तिता नाहम देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते। तात्पर्य है, हम आत्मा से भिन्न पदार्थों को भी आत्मा समझ लेते हैं, यही हमारा ज्ञान है। सबसे बड़ी गलती तो हम यह करते हैं कि हम अपने शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं। भला अचेतन शरीर कभी आत्मा हो सकता है? जब व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उसमें जो परिवर्तन आता है उसका निर्देश गीता में इस प्रकार किया गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरस्तत्रण मुह्यति। शरीर आत्मा नहीं है, बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। जीवन और मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा तो जन्म मरण से रहित है। ऐसा ज्ञान जिसे हो जाता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता और दुखी भी नहीं होता। गीता में आगे कहा गया है, वा

0: जाति नवानि देही। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है उसे पुराने कपड़े उतारने में कोई दुख नहीं होता, वैसे ही आत्मा नए नए जन्म धारण कर पुराने शरीरों को छोड़कर नए नए शरीरों को धारण करती रहती है। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनसेन ने कर्म बंधन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, संकल्प वशगो मूढ़ो वस्तुष्टानिष्टतां व्रजेत रागद्वेषौ ततस्ताभ्यां बंधम दुर्मोचमश्नुते। अर्थात मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्पों के कारण व्यक्ति किसी वस्तु को अपने अनुकूल अर्थात प्रिय और किसी को प्रतिकूल या अप्रिय मान लेता है। धीरे धीरे उस वस्तु के प्रति राग या द्वेष बढ़ता जाता है। ये राग द्वेष ही आत्मा को कर्मों के कठिन बंधन में डाल देते हैं। आत्मा की अधोगति के कारण क्या है इस संबंध में गीता कहती है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयन्तजेत। अर्थात आत्मा की अधोगति के कारण है उसके मन के विकार, वे तीन हैं काम क्रोध और लोभ। इसलिए आत्मज्ञानी इन विकारों से सर्वदा दूर रहने का यत्न करता है। यह यत्न ही उसकी साधना बन जाती है, यह साधना ही उसे परमात्मा पद की ओर अग्रसर करती है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थात जब मनुष्य हृदय से विषय भोग की लालसा या इच्छा निकाल देता है तब वह अमरता की स्थिति में पहुंच जाता है और ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है।
1: कार्यक्रम प्रकाश किरण में आज का विषय था आशा तत्व का महत्व, स्वर था श्री दामोदर शास्त्री का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर हैं वाणी जयराम और ए हरिहरन के।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर थे वाणी जयराम और ए हरिहरन के। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि सामये की, विषय है फूलों की खेती।
1: किसान बहनों भाइयों, फूलों की खेती करने से हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि को भरभरा और जैविक पदार्थों से भरपूर रखना जरूरी है ताकि फूलों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके और 6 से 8 घंटे की प्रतिदिन सीधी धूप ये जरूरी होती है। साथ ही 50 से 70% तक आर्द्रता उपयुक्त मानी गई है। अभी आप यदि आप सीधी बुआई करते हैं तो ये विधि उन फूलों के लिए अच्छी है जिनकी जड़ें अधिक संवेदनशील नहीं होती हैं। जैसे गेंदा आप सीधा बो सकते हैं, झीनिया और कॉस्मोस और सूरजमुखी ये आप सीधे बो सकते हैं। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, यानी कि 2 से 3 बार यदि जुताई कर लेंगे तो अच्छा भुरभुरा खेत बन जाएगा। 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की अच्छी पकी हुई खाद का उपयोग करें और इन फूलों के लिए जब बोनी करें तो कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। फूलों के बीजों को अधिक से अधिक 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए और इनको फिर हल्की मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट से ढककर हल्की सी सिंचाई कर दें। इसके अलावा यदि आप सीधी बुआई नहीं कर रहे हैं तो नर्सरी में पौध तैयार कर सकते हैं। जैसे कि नर्सरी में आप गुलाब तैयार कर सकते हैं, पिटूनिया, पैंसी और डहलिया ये आप नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्यारियां बनानी होगी। औसतन 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी पर्याप्त होती है और यह क्यारी आप छाया वाली जगह में बनाएं। बीज के ऊपर हल्की मिट्टी और पत्ती की खाद इसका मिश्रण डालें। आपकी जो पौध है वो नर्सरी में 25 से 30 दिन में रोपाई के योग्य बन जाती है। जब आप मुख्य खेत में इन पौधों की रोपाई करेंगे तो उसमें आपको 30 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना है और इन कतारों में पौधों की रोपाई आप 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कर दें। रोपाई के बाद छायांकन और हल्की सिंचाई अवश्य करें। क्योंकि अब मौसम गर्म हो रहा है तो शुरुआत की जो अवस्था होती है यानी कि बीज अंकुरण की या तो पौध रोपाई की, इसमें आप हर 3 से 4 दिन में हल्की सिंचाई जरूर करें। इसके बाद फिर आती है विकास की अवस्था। इस विकास की अवस्था में आपको 6 से 7 दिन के अंतराल पर एक बार सिंचाई करना है। फूल आने की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें नियमित सिंचाई की जरूरत पड़ती है, परंतु ये ध्यान रखें कि जल का जमाव मिट्टी में ना हो, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई सबसे अच्छा तरीका है। फूल के पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंच जाता है और रोग और खरपतवार नियंत्रण में इससे मदद मिलती है। इसी प्रकार एक और सिंचाई की पद्धति है जो हमारे किसान बहन भाई काफी उपयोग करते हैं, स्प्रिंकलर की। आपको ये कहना चाहेंगे कि स्प्रिंकलर कई बार जल भराव की स्थिति बना देता है, इसलिए ध्यान रखें और कोशिश करें कि ड्रिप या टपक सिंचाई का ही उपयोग हो। अब बात करें इन फूलों में कीट और रोग भी लगते हैं। कीट में थ्रिप्स लग जाता है। थ्रिप्स के लिए आप नीम का तेल ले लें, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी प्रकार स्पिनोसेड एक दवा आती है जो कि जैविक है, इसका भी 2.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। फूलों में सबसे ज्यादा माइट्स लगते हैं, इसके लिए आप गंधक का पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर या फिर प्रोपर गाइट 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। एफिड्स या माहो, इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या फिर नीम का अर्क, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। चेपा कीट के लिए नीम तेल या फिर एसिटामिप्रिड 0.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। फूलों में कटवर्म, ये फूलों को काट लेता है, इसके लिए भी आप नीम का तेल या स्पिनोसेट का उपयोग कर सकते हैं। रोग में इसमें जड़ गलन आ सकता है तो इसके लिए आपको बीजों का उपचार ट्राइकोडर्मा से करके बोएं और पत्तों पर यदि धब्बे दिखें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गुलाब में अक्सर ये देखा गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू का रोग जो कि भभूतिया कहलाता है, इसके लिए सल्फर आधारित फफूंदनाशक जैसे कि हेक्सा कोनाजोल, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जड़ सड़न यदि होता है तो ट्राइकोडर्मा से भूमि का और बीज का जैविक उपचार अवश्य करें और जल निकासी अच्छी रखें। एक रोग और होता है जिसको हम ब्लाइट बोलते हैं, इसके लिए भी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर मेटालेक्सिल दवा का उपयोग करना होगा।
0: आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी, विषय था फूलों की खेती, प्रस्तुति थी विपिन यादव की। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, अभी 7:20 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर, 8:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का, 9:00 आप सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम लोक रस्तार में, आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मलखानपुरी और लखनलाल रजक, 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 10:05।

10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे और उसके बाद 10:20 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे जिसमें 2:30 पर बच्चों के लिए मुस्कान कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। दूसरी सभा में शाम 5:02 पर कार्यक्रम युवावाणी हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:30 पर सुनिए फिल्म संगीत और 6:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति तराने। कृष्णा नायडू के गाए बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं दीप्ति राय। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। आज इस कार्यक्रम में प्राकृतिक रूप से सामान्य स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी। रात 8:00 सुर्खियों में और 8:15 पर डगर विकास की ये दोनों कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दें दिन में 2:30 पर बच्चों के लिए कार्यक्रम मुस्कान का प्रसारण होगा। आज की यह प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: انتجها. पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैण्ड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी वर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशौ वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः, पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं, तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा सङ्कटसमं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विकविकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसङ्ख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीयसम्बद्धेभ्यः अधिका महत्त्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैण्ड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीयचरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिकसम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। CBSE इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः 23-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहाय, पश्चिमबङ्गाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः, सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारङ्गवार्णकी सञ्चेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु उत्तरपूर्वीयक्षेत्रस्य कतिपयभागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडामालिकायाः पुरुषयुगलवर्गीये निर्णायकद्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी च इण्डोनेशियादेशस्य लियो रॉली कार्नाण्डो डेनियल मार्थिनाभ्यां स्पर्धिष्येते। इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनाङ्कैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम्, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए हरित हाइड्रोजन की कार्ययोजना, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर नीदरलैंड्स का सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल युग के ताम्र प्लेटों को भारत वापस लाने के संबंधित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। ताम्र प्लेट की वापसी भारत की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ASML के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कल जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ये पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: आज नवाचार और तकनीक का जमाना है, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। प्रस्ताव से उत्पन्न चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानूनों, अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति शासन से उत्पन्न मुद्दों को हल करना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, बैंकों और सरकार के संबंधित विभागों पर भी असर पड़ता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन के पूर्व 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। धार जिले में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए 13 कृषि रथ तैयार किए गए हैं, जो जिले के सभी 510 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर जिले के सांवेर में कृषि रथ का वर्चुअली शुभारंभ किया। आगामी 10 दिनों में कृषि रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को खरीफ मौसम की क्षेत्रीय फसलों के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं शिवपुरी जिले में भी सभी विकास खंडों में कल 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया, तथा खंडवा में महापौर अमृता यादव ने कृषक जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री

में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री के संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए थे। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। वहीं खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को छैगांव माखन तथा देशगांव क्षेत्र में पटाखा गोदामों का पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमरेरी अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है, जिससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को कल 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता में नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं कल बारिश दर्ज की गई, जबकि खंडवा, रतलाम, गुना, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में लू का असर रहा। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचाव करने की एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और गुना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल डेंगू नियंत्रण, रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतना जिले के मझगवां में फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के वारासिवनी सांदीपनी विद्यालय के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ग्रैंड विनर का खिताब अपने नाम किया। और बैतूल में 18 से 25 मई तक जनजातीय समुदाय के लिए लाभार्थी संतृप्ति शिविर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र के 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

नमस्कार। अभी श्रोताओं, मौसम का बड़ा विरोधाभासी रूप देखने को मिल रहा है। तापमान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ये एक समझ लें कि भीषण स्थिति की ओर पहुंच रहा है। और वहीं प्रदेश के बहुत सारे इलाकों से बूंदाबांदी की खबरें भी आ रही हैं। और ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में सेहत की सुरक्षा, सेहत की देखभाल एक सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। आमतौर पर इस मौसम में निर्जलीकरण की समस्या बहुत देखने में आती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो पसीना काफ़ी निकलता है और शरीर में द्रव्य पदार्थों की कमी होते जाती है, इसलिए पेयजल की आपूर्ति सतत बनाए रखें। और एक बात कभी कभी जहन में और आती है, क्या आपको नहीं लगता है कि बड़े सुखों की तलाश में हम लोग छोटे छोटे सुखों की अनदेखी कर जाते हैं। अब मसलन आप कभी ये करके देखें, हो सकता करते भी हों, कि आपके घर का जो झरोखा है, खिड़की है या छत है, वहाँ पर पानी का बर्तन रखें, मिट्टी का बर्तन में पानी रख दें, थोड़े से अनाज के दाने बिखरा दें या खाने पीने की चीज़ें जो पक्षी खा सकते हैं, और फिर दूर बैठकर इत्मीनान से प्रतीक्षा करें। जब पक्षी उतरते हैं, आपके बिखराए हुए दाने खाते हैं और पानी पीते हैं, वो दृश्य जो सुख देता है वो शब्दों से परे होता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करके देखें, बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और इन पक्षियों में एक परिंदा ऐसा है जो सदियों से शांति का प्रतीक माना जाता रहा है, और वो है कबूतर। कबूतर सिर्फ शांति का प्रतीक भर नहीं है, कबूतर दूर संचार का प्रतीक भी है। और मुझे लगता है, और आप भी मानेंगे, कि पहला संदेशवाहक अगर कोई है तो वो है कबूतर।

दोस्तों कल्पना करें, कबूतर से शुरू हुआ संचार का सिलसिला आज कहाँ पहुँच चुका है। आज संचार के इतने ज़्यादा तरीके हैं कि आज पूरी दुनिया को एक विश्वग्राम की अवधारणा में लिया जाता है, यानी दुनिया के किसी भी कोने

0: में कोई भी घटना होती है, कोई भी वाक्या होता है और पलक झपकते पूरी दुनिया में उसका फैलाव हो जाता है। ये संचार के साधनों की खूबी है। और आज 17 मई है, 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी और उसकी स्मृति में आज विश्व दूरसंचार दिवस हर 17 मई को मनाया जाता है। तो दूरसंचार के साधनों ने आज दूरियां कितनी कम कर दी हैं। हमारे प्रसारण की ही बात करें, कभी वाल्व वाले रेडियो हुआ करते थे जो शुरू होने में वक्त लिया करते थे, लेकिन अब ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कहीं भी आप हमारा प्रसारण सुन सकते हैं। ये संचार की खूबी और खूबसूरती है।
1: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

दोस्तों, आज संचार क्रांति का ये आलम है कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट आई है। अब मुट्ठी में चाहे माउस हो, चाहे मोबाइल हो, छोटे रूप में पलक झपकते एक क्लिक के माध्यम से आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। अब आलम यह हो गया है कि किसी शहर में कोई घटना हो सकता है वहाँ के रहने वालों को बाद में पता चले, उससे पहले पूरी दुनिया को वो घटना पता चल जाती है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हे गर्ल्स, हाय, कांग्रेचुलेशंस। आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, अच्छी सेहत कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है और ये सौगात सबको नहीं मिलती। उनसे पूछिए जो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अब आलम यह हो गया है कि बहुत सारी बीमारियां हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं। जहां पर चार लोग इकट्ठे होते हों, चाहे वो कार्यालय हो या कहीं और हो, और जब सेहत संबंधी बातें होती हैं तो उस व्यक्ति को बहुत हैरत से देखा जाता है जो ये कहता है कि मुझे ना तो डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है। और अब जागरूकता का आलम यह है कि लोग मधुमेह या रक्तचाप के नाम से उतना नहीं जानते, भले वो पढ़े लिखे ना भी हों, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। और ये बीमारियाँ अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और हमारी जो दबाव वाली जीवन शैली है उसके देन इन्हें कहा जा सकता है। देखिए, सेहत की देखभाल कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन अनियमित जीवन शैली से बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जिसमें ये बीमारियाँ भी हैं। और कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जिनसे परहेज़ की बात डॉक्टर्स करते हैं, जिसमें शक्कर है और नमक है। ये दो ऐसे स्वाद हैं जो खाने का जायका तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन इन्हें अगर पूरी तरह से छोड़ भी दिया जाए, यानी आप किसी भी रूप में शक्कर का सेवन बंद कर दें और किसी भी रूप में नमक का सेवन बंद कर दें, तब भी हमारे शरीर में किसी तरह की कमी इसलिए परिलक्षित नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है और जो खाना है हमारे पेट में जाने के बाद ग्लूकोज में ही टूटता है। और हम जो सब्जियाँ खाते हैं, विभिन्न तरह की भाजियाँ खाते हैं, उनसे भी नमक की समुचित मात्रा हमारे शरीर को मिल जाती है, लेकिन खाने का जायका भी अहम होता है। इसलिए हमेशा इनका संतुलित इस्तेमाल करें और अपनी सेहत के प्रति हमेशा बाखबर रहें।

0: गीत के बाद आपको ये भी बता दें कि आज उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन ये हकीकत है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Hey girls,
4: hi, congratulations.
3: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे।

दोस्तों, ये कलाम है अब्दुल हई फजल मोहम्मद का, जिन्हें दुनिया साहिर लुधियानवी के नाम से जानती है। साहिर की जब बात होती है तो उनकी नज़मों का जिक्र भी होता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध नज़्म की बात करें फिल्म कभी कभी में, जिसका इस्तेमाल किया गया, एक सुरीला शाहकार जिसमें उतना ही बड़ा सहयोग रहा खयाम साहब का। कुछ हिस्से का इस्तेमाल गीत के रूप में हुआ है, लेकिन ये नज़्म काफ़ी बड़ी है। तो सबसे पहले वही बाकी नज़्म आप सबके लिए।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदास बदन, तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हया तो मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादाए मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

दोस्तों, जिस आभासी दुनिया में हम सब रह रहे हैं, उसमें सबसे मुश्किल काम होता है अपनों के बीच से अपनों को तलाशना। और ये तलाश जिस परिस्थिति में ख़त्म होती है, उसको लेकर वर्षों पहले साहिर ने कुछ यूं बयां किया था।

बिल्कुल दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पर आपके सैकड़ों हज़ारों आभासी दोस्तों, वहाँ पर यकीन मानिए एक दोस्त भी अगर ऐसा है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा है और जिसके कंधे पर सर रख के आप रो सकते हैं, तो ख़ुद को आप हमेशा खुशकिस्मत मानिए। और अब इस कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल

0: मिलिट्री और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और

0: नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोडमैप

लखनलाल रजक के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकदस्तार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 हुए हैं। सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण अब हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तवांजी दोस्त तवांजी होस्ट जानवी भावनानी तवां सबने जो तहे दिल सा स्वागत ते कयां। दोस्तों, अज जो कार्यक्रम शुरू कंदा सी एक ज्ञान सा। हर साल वांगुर हिन साल भी 18 मई ते पूरी दुनिया में विश्व संग्रहालय दिवस मल्हायो वेंदो। ही सिर्फ एक दिवस ना है पर असांजी सभ्यता संस्कृति ए विरासत जे एहतराम जो एक खास मौको है। संग्रहालय उहा जगह आहे जिते हर कला मुस्कराईंदी आहे ऐं वक़्तु पंहिंजो कहाणियूं बयां कंदो आहे। जॾहिं असां कंहिं संग्रहालय में दाख़िल थींदा आहियूं तॾहिं ई असांखे इहो महसूसु थींदो आहे त ॼण असां वक़्त जे सफ़र ते निकिता आहियूं। उते रखियल पुराणियूं मूर्तियूं, तारीख़ी दस्तावेज, नायाब चित्रकारी, पुराणा सिक्का, हथियार, कपड़ा ऐं सांस्कृतिक विरासत असांखे उन्हनि दौरनि सां वाक़िफ़ कराईंदी आहे जिन बारे में असां सिर्फ़ किताबनि में पढ़ियो हूंदो आहे। दोस्तो, संग्रहालय सिर्फ़ शयुनि जो संग्रह न आहे पर उहे असांजी पहचान जो हिकु आइनो आहिनि। उहे असांखे इहे ॿुधाईंदा आहिनि त असांजा जेके बुज़ुर्ग हुआ उहे कीअं रहंदा हुआ, किथे रहंदा हुआ, उन्हनि जी रहणी सहणी कहिड़ी हुई, उन्हनि जी कला, विज्ञान ऐं संस्कृति केतिरी मालामाल हुई। अॼु जे दौर में संग्रहालय जी अहमियत एतिरी वधी वई आहे कि हाणे सिर्फ़ तारीख़ खे महफ़ूज़ रखण तक सीमित न आहे पर तालीम, तहक़ीक़ ऐं प्रेरणा जा मर्कज़ बि थी विया आहिनि। डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑडियो विज़ुअल जरियान, इंटरएक्टिव डिस्प्ले जे माध्यम सां संग्रहालय नई पीढ़ीअ खे पंहिंजी तरफ़ आकर्षित करे रहिया आहिनि। पूरी दुनिया में संग्रहालय अमन, संवाद ऐं सांस्कृतिक एकता जी निशानी आहे। उहे मुल्कनि, भाषाउनि ऐं सरहदनि खां परे इंसानी सभ्यता जी ख़ासी विरासत खे संभालनि था। संग्रहालय

बस असां खे इहो पैगाम ॾींदो आहे त असां खे पंहिंजी विरासत खे कीअं संभालणु घुरिजे, उन जी अहमियत खे कीअं समुझणु घुरिजे। हिकु समाज तॾहिं ई मज़बूत थींदो आहे जॾहिं उहो पंहिंजी तारीख़ जो एहतराम कंदो आहे। संग्रहालय असां खे पंहिंजी जड़ुनि सां जोड़णु ऐं उन जी राह ते हलणु सेखारे थो। अचो हिन संग्रहालय दिवस ते असां इहो प्रण कंदासीं कि पंहिंजी संस्कृति ऐं विरासत खे महफ़ूज़ रखण में असां बि पंहिंजो योगदान ॾींदासीं। त दोस्तो, इन ॼाण खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जो ॻायल ही सुहिणो ऐं प्यारो गीत।

की न कटाए उन किना लेला नैलन जी या सनड़ी साड़ी पाए नकी लाल लिपस्टिक लबन ते नकी मुँह ते रूज लगाए यो पर्स प्लास्टिक जो खणी वन रोज न शॉपिंग लाए ओ चरी 14 कैरेट सोन जा कूड़ा जेवर की न घड़ाए

दोस्तों, हर साल 21 मई ते भारत भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं अमन, इंसानियत, भाईचारे ऐं मुल्क जी एकता जो पैगाम ॾींदो।

आहे। ही ॾींहुं आतंकवाद जे ख़िलाफ़ आवाज़ खणण, मासूम जिंदगियुनि जी कुर्बानीअ खे यादि करणु ऐं नौजवाननि में जागरूकता पैदा करण लाइ ही मल्हायो वेंदो आहे। आतंकवाद सिर्फ़ हिकु मुल्क या हिकु समाज लाइ ख़तरो न आहे, पर ही पूरी इंसानियत लाइ हिकु गंभीर चुनौती आहे। जिते आतंकवाद हूंदो आहे, उते अमन ख़तम थी वेंदो आहे, बेगुनाह जिंदगियूं तबाह थी वेंदियूं आहिनि ऐं समाज में डप ऐं नफ़रत फैलिजी वेंदी आहे। भारत में ही दिवस ख़ासि तौर सां उन मासूम माण्हुनि खे यादि करण लाइ मल्हायो वेंदो आहे, जेके आतंकवादी घटनाउनि में पंहिंजी जान गवाए चुका हूंदा आहिनि। अॼु जे दौर में ज़रूरत आहे त असां पंहिंजे नौजवाननि खे अमन, सहनशीलता ऐं इंसानियत जो सबक ॾियूं। समाज में नफ़रत जे बदिले मोहबत ऐं अहिंसा जे बदिले भाईचारे खे वधायूं। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस असां सभिनी खे ही इहो ई संदेश थो ॾिए त असां मुल्क जी सुरक्षा, एकता ऐं अमन लाइ हिकजुट थी करे कमु कयूं। अचो असां बि इहो प्रण कयूं कि हर क़िस्म जी हिंसा, आतंकवाद ऐं नफ़रत जे ख़िलाफ़ मज़बूतीअ सां बीहंदासीं ऐं अमन इंसानियत जो पैगाम पूरी दुनिया में फैलाईंदासीं। दोस्तों, हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ ॿुधंदासीं महेश चंद्र जो ॻायल ही प्यारो गीत।

0: दोस्तों छुट्टियूं हली रही आहिनि, ॿार पंहिंजा बस्ता फिटी करे मौज पे था माणनि। छुट्टियुनि में त सिर्फ़ु हिकु ई ॻाल्हि यादि ईंदी आहे, नानीअ जो घर ऐं नानीअ जूं आखाणियूं। हाणे त मोबाइलुनि जो ज़मानो अची वियो आहे, ॿार पंहिंजी मोबाइलुनि में ई मस्तु रहंदा आहिनि। पहिरियों त कीअं नानी ॾाॾीअ खां आखाणियूं ॿुधी पंहिंजो ॾींहुं कटिबो हो, किथे रहियो आहे उहो ज़मानो। पर मां त इहो ई चवंदसि की पंहिंजे ॿारनि खे नानियूं ॾाॾियुनि जे अॻियां विहारे उन्हनि खे आखाणियूं ज़रूरु ॿुधारायो। त अचो असां बि अनुराधा लालवाणीअ जी आवाज़ में ॿुधूं था हिकु आखाणी।
1: कहाणीअ जो सिरो आहे तर्पण। आख़िर नानीअ जे वञण खां पोइ सभिनी खे ॾाढो ॾुख थियो। सभिनी अखियुनि मां थोरा थोरा ॻोढ़ा वहाया। बसि नानी जूं नानीअ जूं यादगिरियूं

बाकी रहिजी वयूं। नानीअ खे पुटु न हुयुसि, सिर्फ़ु टे धीअर अंजू मंजू संजू हुयूं, ॾोहिटो ऐं पाड़ेसिरी पुटु नारायण, जेको ॾुख सुख में कमु ईंदो हुयुनि। उन्हनि मिली करे नानीअ जो अंतिम संस्कार कयो। संस्कार करे सभई मोटी आया। उन वक़्त बि सभिनी थोरियूं थोरियूं सिसकियूं भरियूं, पोइ सभई चुप करे वेही रहिया। विधवा धीउ अंजू ख़ूब रुनी। घर में हुन जो हिकु सहारो नानी ई हुई, उहा बि हाणे हली वई। अंजू बिल्कुलु अकेली थी वई हुई। अंजूअ खे आथत ॾींदे ॾींदे संजू नानीअ जूं सभु पुराणियूं ॻाल्हियूं यादि करणु लॻी। जॾहिं खां नानीअ हिन मोहल्ले में कमिरो वरितो हुयो, सभई पाड़े वारा नानीअ खे अम्मा अम्मा करे सॾींदा हुया ऐं सार संभाल लहंदा हुया। कॾहिं नानीअ खे कुझु थी वञे त कोई दवा वठी अचे त कोई सेवा करणु अची वेंदो हुयो। अंजू बि पाड़े वारनि ऐं उन्हनि जे ॿारनि सां हिरी मिरी वई हुई। सभिनी ॿारनि खे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सेखारींदी हुई। शैतान ॿारनि खे बि पंहिंजे प्यार सां मोहे उन्हनि खे सुधारे छॾींदी हुई। नानीअ जी उमिरि लॻभॻि 90 साल हुई, त बि हूअ ॾाढी सुहिणी नज़र ईंदी हुई। उन खे अक्सर कमर जे सूर जी शिकायत रहंदी हुई, त बि घर जी साफ़ सफ़ाई अहिड़ी रखंदी हुई कि घर पियो चमकंदो रहंदो हुयुसि। पंहिंजो नंढो वॾो कमु सभु पाण करण में विश्वास रखंदी हुई। नानीअ जी भॻवान में ॾाढी श्रद्धा ऐं पूॼा पाठ में ॾाढो विश्वास हुयुसि। जॾहिं बि ॿार पाण में विढ़ंदा हुया, नानी उन्हनि खे सुठी ॻाल्हियूं करे समझौतो कराईंदी हुई ऐं समझाईंदी हुई, झगड़ो करणु ख़राबु ॻाल्हि आहे, मिली जुली रहणु सुठी ॻाल्हि आहे। नानीअ जूं इहे ॻाल्हियूं ॿारनि खे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं हुयूं ऐं ॿार बि मञींदा हुयसि। हिकु ॾींहुं हिकु ॿारु कंहिंखे नवां कपिड़ा ॾिसी मशिरजी वियो ऐं चवण लॻो, मूंखे बि अहिड़ा ई कपिड़ा घुरिजनि। उन जी माउ ॿार खे मारण लॻी त नानी ॿार जो रोअण ॿुधी उते पहुती ऐं चयाई, ॿार कंहिं शइ लाइ जिद न कंदा त उहे ॿार कहिड़ा, भला छा वॾा जिद कंदा। ॿारनि जो त इहो ई कमु आहे, मारण सां त ॿार अञा बिगड़ी वेंदा। उन्हनि खे प्यार सां ऐं मिठड़ी ॻाल्हियुनि ज़रिए सही रस्ते ते आणणु घुरिजे। वॾनि वातां ॿुधो हुयो कि औलाद न थियण सबबि नाने ॿी शादी कई हुई। पहिरीं ज़ाल बिना औलाद भॻवान ॾे हली वई ऐं ॿीअ ज़ाल नानीअ मां टे धीअर ई पैदा थियसि, कोई छोकिरो न। हिकु ॾींहुं अचानक नानीअ जो पेर बाथरूम में तिरकी वियो ऐं हूअ किरी पई। नानीअ खे ॾाढो सूरु थी रहियो हुयो ऐं हूअ अंधाहूं करे रही हुई। सभई पाड़ेसिरी अची गॾु थी विया। सभिनी खां पहिरियां त नानीअ खे मथे खणी सुम्हारियो वियो, पोइ कंहिं हेड चूनो लॻायो त को सेक करणु लॻो त कोई दवा ॾेई रहियो हो, पर पोइ बि नानीअ जो सूरु घटि कोन थी रहियो हो। सभिनी फ़ैसिलो कयो कि ॿियनि धीअरुनि खे बि घुरायो वञे ऐं नानीअ खे अस्पताल वठी वञिजे। नानीअ जूं धीअर ॿिए ॾींहुं आहियूं। तेसिताईं नानीअ जी हालति ॾाढी ख़राब थी चुकी हुई, टंग सुजी पई हुयसि, शायदि हॾी टुटी पई हुयसि। जीअं तीअं चार माण्हुनि नानीअ खे चादर में विझी चइनि कुंडुनि खां पकिड़े चौथी मंजिल तां हेठि लाहे अस्पताल वठी विया। डॉक्टरनि जांच खां पोइ ॿुधायो कि टंग में फ्रेक्चर आहे, ऑपरेशन थींदो। नानीअ खे भर्ती करायो वियो। सभई जांचूं करण खां पोइ ऑपरेशन कयो वियो। नानीअ जी सुंदरता ऐं सफ़ाई ॾिसी सभई हैरत कंदा हुया। नर्सूं नानीअ खे ॾाढो प्यारु कंदियूं हुयूं
ऐं

0: वरी-वरी अची मथे ते हथ घुमाए प्यार जो इजहार कंदियूं हुयूं ऐं चवंदियूं हुयूं, नानी केतरी सुहिणी आहे, गिल ते कारो मसो नानीअ जी सूंह अञा वधाए रहियो हो। नानीअ जो ऑपरेशन त सही थियो पर कमर ॾे डॉक्टरनि ध्यानु ई न ॾिनो। नानीअ जी कमर ॾे ध्यानु न ॾियण सबबि नानी कॾहिं उथी न सघी। हिकु खट ते ई लेटी पई दाहूं कंदी हुई। उते ई खाइणु पीअणु सुम्हणु हलंदो रहियुसि। सेवा करे करे आख़िर सभई परेशान थी विया। सभिनी जी प्यारी नानी आख़िर पंहिंजा आख़िरी ॾींहं ॻण लॻी। आख़िर अहिड़ी हालत में हुअ केतिरा ॾींहं जिंदा रही हा। आख़िर हिकु ॾींहुं नानीअ पंहिंजे जीवन जो आख़िरी साहु खयो ऐं सभिनी खे अकेलो छॾे हली वई। नानीअ जे मौत जो कंहिंखे वधीक ॾुखु न थियो, बल्कि संतोष मिलियो कि नानीअ जा ॾुख ऐं तकलीफ़ूं नानीअ साण ई हली वयूं। नानीअ जी मौत ते सभिनी पंहिंजा ॿ ॻोढ़ा ॻाड़े नानीअ जी अस्थियुनि जो तर्पण कयो। महिरबानी
1: दोस्तों, अॼु असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत जी ॻाल्हि कंदासीं जिन पंहिंजी सोच, हिमत ऐं सुधारवादी वीचारनि सां समाज खे हिकु नई दिशा ॾिनी। हर साल 22 मई ते राजा राम मोहन राय जी जयंतीअ जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जे जनम दिवस जे रूप में यादि कयो वेंदो आहे। उहे भारतीय नवजागरण जे पिता जे नाले सां मशहूरु आहिनि। उहे हिकु अहिड़ा दूरंदेश इंसान हुआ जिन समाज में फैलियल घणनि ई बुरायुनि जे ख़िलाफ़ पंहिंजी आवाज़ खई। हुननि सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास ऐं सामाजिक असमानता जे ख़िलाफ़ मज़बूत संघर्ष कयो। उन्हनि जाइफ़ाउनि जे अधिकारनि, शिक्षा ऐं सम्मान लाइ अहम कमु कयो आहे। उहे पंहिंजे दौर सां काफ़ी अॻियां जी सोच रखंदा हुआ। उन्हनि शिक्षा खे समाज जी तरक़ीअ जो सभिनी खां वॾो ज़रियो समुझो। अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान ऐं आधुनिक वीचारधारा खे भारत में मज़बूत करण में उन्हनि जो योगदान बेहद अहम रहियो आहे। उहे सिर्फ़ समाज सुधारक न हुआ पर इंसानियत, समानता ऐं तरक़ीअ जा पैगंबर हुआ। उन्हनि ब्रह्मो समाज जी स्थापना कई जंहिं जो मक़सदु समाज में धार्मिक सुधार, एकता ऐं इंसानी बराबरीअ खे वधाइणु हुओ। अॼु जे दौर में बि उन्हनि जा वीचार असां लाइ ओतिरा ई ज़रूरी आहिनि जॾहिं असां समाज में शिक्षा, जाइफ़ाउनि जी सुरक्षा, बराबरी ऐं इंसानियत जी ॻाल्हि करियूं था। उते इन्हनि जी सोच असांखे राह ॾेखारींदी आहे। समाज मां हर क़िस्म जी बुराई, अंधविश्वास ऐं भेदभाव खे ख़तमु करण जो योगदान असांखे बि ॾियणु घुरिजे। दोस्त, जीअं मां ॻाल्हि करे रही हुयमि त छुटियूं हली रहियूं आहिनि ऐं मिजमाननि जी अचवन त लॻी पई हूंदी आहे। कंहिंजे घर धीअर पियूं अचनि त कंहिंजूं नूअर पियूं वञनि। त अचो इन्हीअ ते ई ॿुधूं था महेश चंदर जी आवाज़ में ॻायल ही सुहिणो गीत।

0: से
1: खाई रुखी सुखी मां रोटी घर जे अंदर घुमंद से दीह गुजारे सांझी धारे चादर ताणे सुमंद से
0: साईं चादर ताणे सुमंद से।

0: ॾिसी नओं मिज़मान कयाऊं उन जो आदर भाव पहिरीं राति ॾिनऊं हुन खे खासो बोड़ पुलाउ
1: साईं खासो बोड़ पुलाउ।

0: माल मली दा खाई साई घिटिया घिटिया में घुमंद से घुमी समूरो शहर रात जो सेज पलंग ते सुमंद से
1: साई सेज पलंग ते सुमंद से।

0: रही पियो मिजमान हुनन भी भायो पंहिंजो भाग खेस ॾिनाऊं सादी रोटी सूरण जो ई साग
1: साईं सूरण जो ई साग वावा सूरण

0: सूरण सां गॾु चांहि चखे मां घाटा जंगल घुमंदुसि फिके खीर सां खिचड़ी खाई संदल ते ई सुम्हंदुसि
1: साईं संदल ते ई सुम्हंदुसि वाह वाह

सोचण वेठा सभु घर वारा हीअ त ग़रीब जी ॻाल्हि खेसि ॾिनऊं अणबो ढोढो मिर्चनि वारी दाल।

0: मिर्चन वारी दाल कटेमा जबल पहाड़ियों घुमंद से जूठी सूठी ओबर खाई धरती तेई सुमंद से
1: धरती तेई सुमंद से वाह।

दोस्तों हाणे वक्त थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हां खे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नए कार्यक्रम सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां। सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: कवि श्री राग तेलंग।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
4: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख है मयंक भार्गव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बैतूल जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 21 चार्ज अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत 2,802 गणना ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में से सोमवार की शाम तक 2,400 गणना ब्लॉकों में मकान गणना कार्य प्रारंभ कर डेटा पोर्टल पर सिंक किया जा चुका है। जिले के सभी 21 चार्जों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO के अंतर्गत फील्ड कार्य उत्साह के साथ किया जा रहा है। चार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा मकान सूचीकरण और ब्लॉक की सीमाओं की स्थल पर ही पहचान की जा रही है। इसके साथ ही प्रगणकों द्वारा भवनों की पहचान एवं नंबरिंग करते हुए ड्राफ्ट लेआउट मैप तैयार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में बैतूल जिले में इस बार कुल 4,56,050 हेक्टेयर के क्षेत्र में खरीफ की फसलों का रकबा तय किया गया है, जिसके विपरीत पिछले साल 4,55,510 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। इस साल कुछ फसलों का रकबा बढ़ा है जबकि कुछ फसलों के रकबे में कमी आई है। बैतूल जिले के किसान कल्याण एवं कृषि विकास उप संचालक डॉक्टर आनंद बडोनिया ने बताया कि इस बार धान को 44,000 हेक्टेयर में बोया जाएगा। पिछले साल ये 43,872 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं मक्का 3,01,500 हेक्टेयर में बोई जाएगी, जो कि पिछले साल 3,93,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं कोदो कुटकी का रकबा इस बार 1,000 हेक्टेयर रहेगा। बीते साल इसका रकबा 639 हेक्टेयर था। उड़द, मूंग और अरहर का रकबा भी इस साल बढ़ेगा। बीते साल इन दलहनी फसलों का रकबा 6,971 हेक्टेयर था, जबकि इस बार 7,750 हेक्टेयर में ये फसलें बोई जाएंगी। वहीं तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की फसलों का रकबा भी बढ़ेगा। इस साल बैतूल जिले के 1,718 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये सौगात दी जाएगी। न्यूजीलैंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदा पहुंचकर नांदा हानि कलेक्शन एवं प्रसंस्करण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने शहद उत्पादन से जुड़े स्थानीय समूहों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में हनी कलेक्शन सेंटर स्थापित होने के बाद शहद के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले शहद का मूल्य लगभग 55 रुपए प्रति किलो था, जो वर्तमान में बढ़कर 280 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बैतूल जिले में इस साल गेहूं खरीदी की रफ्तार पूरी तेजी पकड़ चुकी है। जिला आपूर्ति अधिकारी के टेकाम ने जानकारी दी है कि अभी तक जिले में 40,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 44,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। अभी भी हजारों किसान अपने गेहूं की खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल की खरीदी का आंकड़ा देखकर जिले को इस साल गेहूं खरीदी के लिए कम लक्ष्य दिया गया था। वहीं इधर बंपर उत्पादन को देखते हुए जिले से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40,000 मीट्रिक टन किए जाने का

0: विरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए क्षीरधारा ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जिले के 37 गांवों का चयन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि पेयजल समस्या से प्रभावित गांवों में बोरिंग मरम्मत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर जल आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बढ़ावा देकर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चांदोरा ताईखेड़ा मार्ग के कार्य के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बैतूल परतवाड़ा मार्ग को लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री का आभार इस मौके पर व्यक्त किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र के सिरपुर मॉडल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैतूल में इसके प्रयोग सफल रहे हैं। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

नमन मातृभूमि को, जिसने हमें भारतीय होने के सम्मान से नवाजा और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव से विभूषित हमारा देश मानवीय मूल्यों और सर्वधर्म समभाव की मजबूत परंपराओं का वाहक है। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गारो गान की डेढ़ सदी, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:10 होने को है समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण। कुछ ही पलों में हम दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 में सबसे अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटली ओपन के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी स्वीडन

0: के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: भारत और स्वीडन के बीच एक सदी से अधिक पुराना व्यापारिक और आपसी संबंध का समृद्ध इतिहास है, जो पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की पहचान कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से होती है, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी। आज ये संबंध अपनी सांस्कृतिक नींव से आगे बढ़कर एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक साझेदारी में तब्दील हो रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया है। शुक्रवार रात को नाइजीरिया के लेक चाड बेसिन में सेना द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया गया, जिसमें इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी और अन्य आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबी ने इनके मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने संयुक्त सैन्य अभियान की सराहना करते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि नाइजीरिया में शीर्ष आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा देश में ईसाइयों की सुरक्षा में सहायक होगा। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना स्थित वियना स्टथडिल में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 प्रतियोगिता जीत ली है। एक रिपोर्ट।
4: प्रतियोगिता में DARA के गीत बंग रंगा को सबसे अधिक वोट मिले। बल्गारिया की 4 वर्ष में ये पहली जीत है। बल्गारिया ने कुल 516 अंक के साथ प्रतियोगिता जीती है। यूरोविजन की परंपरा का पालन करते हुए पहले निर्णायक मंडल ने अंक दिए, उसके बाद जनता के टेली वोट के परिणाम घोषित किए गए। वहीं निर्णायक मंडल ने गीत बंग रंगा को 204 अंक दिए और टेली वोट के माध्यम से उसे 312 वोट मिले। लगभग 10 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्णायक मंडल और जनता ने एक ही विजेता को चुना है। इससे पहले ये प्रतियोगिता 2017 में कीव में हुई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इसराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 45 दिन के युद्ध विराम के विस्तार की घोषणा का स्वागत किया है। श्री गुतरश ने संबंधित देश से शत्रुता समाप्त करने, हमले रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अपने दायित्वों का समुचित पालन करने का आग्रह किया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
3: बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले

0: टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे।
1: आज विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटियन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीता। 10 वर्षों में ऑस्ट्रिया ने सबसे अधिक वोट हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिन्हा ने इटली ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, जज्बात की नजाकत भरी अभिव्यक्ति का नाम है कविता, और कविताएं जब सुर और संगीत में ढलती हैं तो जन्म लेता है गाना। और गीत संगीत की ये महफिल है सारंगा। आपकी बहुत सारी चिट्ठियों के साथ हम तैयार हैं आपके पसंदीदा गाने आपको सुनवाने के लिए, और रुख करते हैं आज के पहले गाने की ओर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती और तनीश सेतिया, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पंकेज, साक्षी मनन और तानिया, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया, इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, गौतमनगर नांदेड़ से हमारे श्रोता हैं प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में है, गीत रानी मलिक का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है दिल है बेताब।

विद्यानगर, तेंदुखेड़ा, दमोह से ओम प्रकाश नेमा, किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदनी और शिवांश। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया, शरण, ज्योतिषी, पुष्पा, ज्योतिषी, गोल्डी, रोली, लकी, श्वेता और परु। गड़िया मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। जामरून तारधपुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी, परभणी हुन और गणेश हरगांवकर। मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणिता, अर्जुन गवाड़कर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। पुणे से पंकज बाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाडोदे और चंद्र प्रभा बाडोदे। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुधमा सेन, लालू गोलू सोनी, शेख जमील मुन्ना बिसरता और उनके बहुत सारे दोस्त। ये गाना

क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से हमारे श्रोता हैं डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ये चिट्ठी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर की है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी, राधेश्याम चावला और उनके दोस्त। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। आप सबको सुना रहे हैं बागी फिल्म का ये नगमा, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत और आवाज़ है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

जतू का किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज़ आलम और नाज प्रवीण, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से ही अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद्र संधू, महावीर संधू, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलखमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आप सबकी पसंद पर अगला गीत फिल्म अनर्थ से देव कोहली के बोल, स्वर और संगीत आनंदराज आनंद का।

इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और उल्लाह अकरम नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, सिंहपुर बड़ा से बता ही चुके हैं, और कवर कॉलोनी बड़वाह की ये चिट्ठी है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। आप सबको सुना रहे हैं आवारा बन फिल्म का ये नगमा जिसे गाया सुजैन डिमेलो ने, सईद कादरी और आसिफ अली बेग ने इस गाने को लिखा और एनी ने संगीतबद्ध किया।

अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ में है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के संगीत जतिन ललित का, फिल्म का नाम है यारा दिलदारा। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फ़कीर, डब्लूल्लाह फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली और फर्जी वली अंसारी। प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, रमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। और कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणी।

गाने में आने की बात है, लेकिन इधर यानी मेरी ओर से जाने की बात है। तो दीजिए इजाज़त अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:58 होने को है। इस वक्त आप सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, हम भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

2023 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन तीन भाषाओं में से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। विदिशा जिले में अब तक 59,323 किसानों से 5,09,000 टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में 174 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं जबलपुर जिले में 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और IPL क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे से धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आप अपनी फरमाइश हमें बताते हैं टेलीफोन नंबर 2660902 पर। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755।
2: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
2: जी मैडम, मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी सोनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या हो रहा था इस समय?
2: बस गर्मी बहुत ज्यादा है मैडम, बैठे हैं छाया में घर में।
1: ये तो बिल्कुल सही बात है, गर्मी सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि अब इस गर्मी के थोड़े थोड़े नुकसान होना भी शुरू हो रहे हैं।
2: जी मैडम,
1: है ना? तो इसलिए
2: घर में बैठकर
1: जी
2: पंखे में नींबू पुदीना का शरबत पीकर गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बताइएगा। अच्छा,
2: अभी हाल ही में आकाशवाणी के
1: जी
2: गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर
1: जी
2: आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: 8 जून 2026 को ये समय पूर्ण होगा, 90 वर्ष का उत्सव भी लगातार आकाशवाणी में अलग अलग ढंग से चल रहा है। कहीं वॉकेथॉन हो रहा है, कहीं संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी कुछ पुराने लोगों से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन कार्यक्रमों को सुनते रहें।
2: मैडम, जब टेलीविजन
1: जी
2: मोबाइल जैसी सुविधाएं लोगों से दूर थी
1: जी,
2: तब रेडियो एक माध्यम था लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: दुनिया के समाचार पहुंचाना
1: जी,
2: बच्चों की कहानियां, लोक संगीत गाना सुनाना, इसी से संबंधित जानकारी हम सभी के लिए रेडियो ने कुछ न कुछ दिया है।
1: बिल्कुल,
2: धन्यवाद आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भी धन्यवाद देता है अपने श्रोताओं को, आभार व्यक्त करता है सभी सुनने वालों का कि आप लगातार अपने पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहे, यानी आकाशवाणी से जुड़े रहे और आकाशवाणी आप तक सूचनाएं, मनोरंजन और समाचार पहुंचाती रहे। बताइए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: फिल्म का नाम है मैडम जिस देश में गंगा बहती है, और गाने के बोल हैं हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने।
1: क्या बात है,
2: देख लो क्या सर कर दिया आज की सामने।

0: हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे, और आप जिस चीज से भी मिलें कुछ इस तरह से मिलें कि हर मिलने वाले को आपकी याद आती रहे।
1: क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात, इतनी अच्छी दुआ देने वाला कौन कॉलर हमसे जुड़ा है हम जानना चाहेंगे।
0: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी मंसूरी साहब कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा मैडम, और इत्तेफाक की इतनी बात हो रही मैडम कि मैं 10-15 दिन बाद लगाता हूँ, और जब भी लगाता तो आपसे ही मुलाकात होती।
1: जी जी, ये बात हम भी कहना चाह रहे थे लेकिन आपने पहले कह दी, तो इसे सिवाय संयोग के और कुछ नहीं कह सकते हैं। इस गर्मी में क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: मैडम गर्मी का तो ये मैं कहूँगा कि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं इससे प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा रख।
1: क्या प्रोटेक्शन रखते हैं?
0: मैं धूप से तो बहुत ज्यादा बचता हूँ कि धूप में कहीं पे निकलता नहीं हूँ।
1: हाँ।
0: और कभी निकलना होता भी है तो सिर पे दुपट्टा, ये सिर पे अपने टोपी रखता हूँ या रुमाल रखता हूँ, और घर में ही अधिकतर रहता हूँ। और जब जैसे ड्यूटी पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग बाहर दिन में नहीं निकलते हैं, घर पे, वहाँ मतलब गोडाउन के अंदर ही रहते हैं
1: जी।
0: और घर में जो मतलब कि अपना जो तरल पदार्थ रहता है, पानी की मात्रा इसमें गर्मी में कम से कम 1 लीटर ज्यादा बढ़ा देता हूँ। जैसे आम दिनों में पीता हूँ ना, उसे गर्मी में 1 लीटर और ज्यादा कर देता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है, और इसका नापतौल यदि न भी रखा जाए तो भी जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पानी पीजिए, और ऐसा लगे कि पानी पिए हुए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है तो प्यास न भी लगे तो भी जरूर पीजिए।
0: जी जी पीता रहता हूँ, मेरे सिस्टर मेरे को बोलती है देखो प्यास नहीं लगती, फिर भी पीता तो पानी, मैंने स्वस्थ रहना है और डिहाइड्रेशन अगर नहीं होना है शरीर में तो पानी अपने को पीना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि प्यास लगे तब भी।
1: जी, साथ में एक बात का ध्यान हम उम्मीद करते हैं कि सभी रखते होंगे, थोड़ी सी साफ सफाई का भी ध्यान बहुत जरूरी होता है।
0: हाँ,
1: क्योंकि इस समय पसीना बहुत आता है।
0: हमेशा बॉइल वाटर पीते हैं हम लोग।
1: जी, सिर्फ पानी की साफ सफाई की बात नहीं है मंसूरी साहब, पसीना जैसे बहुत आता है, वही हाथ हमारे आंखों में लग गए, वही हाथ मुंह में लग गए, तो इससे कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, तरल पदार्थ और पानी लेते रहें, और साथ ही बताएं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में।
0: फिल्म है घर संसार, जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म है।
1: जी, गीत के बोल।
0: चोट लगी है कहाँ यहाँ, बताना सकूँ मैं कहाँ।
1: जी

0: हेलो
1: हेलो हाँ नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: हम राजेश अग्रवाल बोल रहे हो, यहाँ राजा राम नगर देवास से।
0: जी राजेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी।
0: क्या चल रहा था इस समय?
1: है
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: रेडियो चल रहा है अभी।
0: जी, तो अभी सुबह से कौन कौन से कार्यक्रम सुने?
1: अभी तो जैसे सुबह था अपने नमस्कार भोपाल, और बाकी ये जो आपका आता है सुरमई सवेरा है, और कुछ इंदौर के भी सुनते हैं। जैसे 6 बजे से ही चालू रहता था, और फिर बाद में जैसे मैं दुकान आ जाता हूँ तो फिर यहाँ पर सुनता हूँ।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे?
1: आज मेरा गीत है दीदी, ये हम दोनों मिलके कागज पे दिल पे, ये मुकेश जी की आवाज में है।

0: जी मैम, सागर से बोल रहा है पंडित शिवनारायण तिवारी।
1: जी तिवारी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, मौसम बहुत गर्म है।
1: जी मौसम तो गर्मी का है तो गर्म तो होना ही है।
0: जी ऊपर वैसी बरसात भी होगी अच्छी।
1: हाँ, उम्मीद की जा सकती है, हर बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता है कि होगा
0: जी
1: ही।
0: वो एक नक्षत्र में अच्छा बारिश बता रहे हैं, एक में थोड़ा कम।
1: बताने और होने के बीच का जो फर्क है ना, उसी फर्क को इन दिनों हम सब महसूस कर रहे हैं कि अपन
0: गर्मी की
1: कहते जरूर हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं। जिस
0: जी
1: तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम चक्र गड़बड़ाया हुआ है, उसी का
0: जी
1: नतीजा है कि इतनी ज्यादा गर्मी हम लोग सब भोग रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ये है गाना है मेहंदी वाली रात आ गई, आदमी खिलौना है।

0: हेलो
1: जय माता दी।
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरा नर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी, कैसे हैं वर्मा जी?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: बस, हम तो आपकी फरमाइश सुनवाने के लिए बैठे हैं, तो बताइए कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आपकी।
1: जी मैडम, वहाँ भोपाल में मौसम कैसा हो रहा है? मैडम गर्मी पड़ने लगी हुई है
0: गर्मी
1: वहाँ भी अभी।
0: तो
1: यहाँ
0: बहुत तेज गर्मी है, तीखी गर्मी है, सुबह से ही गर्मी हो जाती है। सूरज निकला नहीं कि गर्मी की तीव्रता महसूस होती है। तो अभी
1: जी
0: पिछले कुछ एक दिनों से तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ जी, हाँ इधर भी ऐसा हो रहा है मैडम मौसम। और
0: जी
1: बारिश तो आती नहीं, थोड़ी बारिश आ जाती है क्योंकि थोड़ी ठंड होता है, पर यह मौसम ऐसा हो गया कि बारिश तो आती नहीं, अंदर आ जाता है बहुत देर तो।
0: हाँ, कुछ चीजें समय और मौसम के हिसाब से ही होती हैं, और वो किस रूप में होंगी ये हम बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं।
1: हाँ जी मैडम,
0: जी
1: तो फिल्म का नाम है मैडम कहीं प्यार ना हो जाए,
0: जी गीत के बोल।
1: और उसमें गाना का बोला दिन ताना बन्नो की चूड़ी लाख की बन्नो का गजरा लाख, ऐसा कुछ
0: ये
1: गाना है।
0: गीत तो आप एक बार और भी सुन चुके हैं
1: नहीं मैडम, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ इस गाने को मैं।
0: ऐसा?
1: हाँ जी, हाँ जी, पहली बार ही फरमाइश कर रहा हूँ मैडम ये गाना।
0: हमें तो कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये गीत हम सुनवा चुके हैं। यही गुजारिश की थोड़ा सा अपने फरमाइश के गानों की लिस्ट को बना के रखें, और उसमें से जो गाना सुन लेते हैं उसको या तो काट दें या टिक लगा दें उस पे, तो
1: हाँ जी,
0: गानों में भी रिपीटेशन नहीं होगा, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी और कार्यक्रम की गुणवत्ता भी बनी रहेगी,
1: हाँ जी मैडम, नहीं वही बात बिल्कुल आपकी ठीक है क्योंकि वो गाने नए नए गाने आए और न तो अच्छा लगता है। ऊपर कई
0: जी।
1: कई चरणों पर तो ये होता है कि वही गाने बजाते रहते, पर आप जैसे आरजे और आरजे से आकाशवाणी भोपाल है तो अलग अलग नए नए गाने या कोई भी
0: जी
1: गाना हो जो कम बजा हो तो वो प्रयास करते हैं मैडम
0: जी
1: बजाने का।
0: बिल्कुल, इसीलिए हमारा कहना ये होता है कि एक अच्छी लंबी लिस्ट बना लें अपनी पसंद के गीतों की। और आप लोग तो बहुत नियमित तौर पर आकाशवाणी सुनते हैं, बहुत सारे स्टेशन सुनते हैं, तो सभी जगह से कई सारे गाने बजते हैं। उन गानों में से जो गाना पसंद आए उसे अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए, और जो गाना सुन चुके हैं उस गाने को क्रॉस कर दीजिए या काट दीजिए या उसमें टिक लगा दीजिए ताकि वो दोबारा ना करें। तो उससे
1: हाँ जी,
0: कार्यक्रम की विविधता और आपकी फरमाइश दोनों का बैलेंस बना रहेगा।
1: मैडम बिल्कुल बात,
0: बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने कार्यक्रम।
1: मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, अम्बेडकर चौक टेगरवाड खुरई से राम सखी परमानंद।
0: जी परमानंद जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अरे अभी थोड़े काम से आए थे, पोस्ट ऑफिस तक तो थोड़ा टाइम था।
0: अच्छा,
1: डाल कराने।
0: हाँ।
1: चलो बहाने फोन ही बाकी कर लें।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो विवाह चले, दो अनजाने अजनबी वो सुना दीजिए, कोई भी सुना दे।

0: हेलो
1: आलमी दीदी, सादर नमस्कार।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: जी, हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरुणी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ, आकाशवाणी भोपाल से।
0: ब्रज रेडियो श्रोता संघ के हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी, ये बताएं कि मथुरा के क्या हाल हैं, कितनी गर्मी
1: जी,
0: पड़
1: मथुरा
0: रही
1: में
0: है।
1: इस वक्त बहुत तेज गर्मी हो रही है, प्रचंड गर्मी के त्रस्त हैं।
0: जी
1: चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, लू के
0: जी
1: प्रकोप में है। तापमान का सवाल है तो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और न्यूनतम मिनिमम जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है रात में।
0: तो बताइए कि इस गर्मी के मौसम में कौन सा गीत आप तक पहुंचाया जाए कि कुछ सुकून मिले मन को।
1: जी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यशोदास साहब ने गीत को गाया है,
0: हाँ
1: हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा
0: क्या
1: है।
0: बात है, बहुत खूबसूरत गीत है, पहुंच रहा है आप।
1: जी, हृदय।

0: फोन कर रही हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम,
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं अमृता बोल रही हूँ रीवा से।
0: कैसी हैं अमृता जी आप?
1: ठीक हूँ मैम, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था इस समय?
1: इसलिए मैम आज वर्ष सावित्री पूजा थी।
0: तो हो गई पूजन?
1: जी जी
0: व्रत रहेगा आज या पूजा के बाद भोजन हो जाता है?
1: नहीं मैम, मैं हमारे यहाँ अमावस्या का व्रत नहीं करते।
0: अच्छा,
1: जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी भी नहीं, मतलब जल कुछ भी नहीं
0: नहीं
1: लेते।
0: लेते हैं बिल्कुल। और इस पूजा में क्या कुछ खास बनता है आपकी तरफ?
1: जी वो गुड़ का वो बनती है पूड़ी वगैरह।
0: अच्छा,
1: बट की जो जैसे फल रहते हैं
0: हाँ
1: उस टाइप के गोल गोल बनाने
0: छोटे
1: पड़ते
0: छोटे,
1: हैं
0: क्या कहते
1: गुड़,
0: हैं आप लोग उसको?
1: उसको बरगद टाइप के
0: बरगदा,
1: गोल।
0: वही नाम जानना चाह रहे थे क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से नाम थोड़े बदल जाते हैं, तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमने पूछा कि वहाँ क्या बनता है और क्या कहलाता है, ये जानना चाह रहे थे। कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: मैम गंगा गंगा जमुना सरस्वती का ही
0: कौन सा
1: गाना,
0: गीत?
1: मूवी का नाम है,
0: हाँ
1: गाने के बोले
0: जी,
1: पति परमेश्वर के सिवा मुझको न परमेश्वर वर चाहिए।
0: लगता है व्रत का थोड़ा असर हो रहा है आप पे। अब भोजन कीजिए, आराम कीजिए, स्वस्थ बनी रहिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए।

0: इस गीत के साथ ही फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया था अमिता त्रिवेदी ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के लिए नए आयाम तलाशना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने और दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देश ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म और परफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है और मशीन लर्निंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुके हैं। रतलाम के पास आज तड़के तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2026 के दूसरे दौर में उज्बेक खिलाड़ी जावखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के फाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, लीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर की। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री की। सनम रे फिल्म का टाइटल ट्रैक पसंद किया है मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला ने इसे गाया है। गीत और संगीत मिथुन का।

अगले गीत की ख्वाहिश फिल्म सुल्तान से है। राहत फतेह अली खान ने इसे गाया है, इरशाद कामिल का लिखा है, विशाल शेखर ने धुन बनाई है। ख्वाहिश भेजी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजशी रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबेरा राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपनी पसंद भेजते हैं।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगले गीत के लिए अनुरोध भेजा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बेरड़ी से अनुरोध है हुकुम करमरकर का, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर का। जय गजानन रेडियो श्रोता संघ कापसी अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई और बाकड़े परिवार के समस्त सदस्य। शिवसेना वसाहत अकोला महाराष्ट्र से कैलाश राव बाकड़े, वंदना ताई बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य। सिंगिस किंग फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है। प्रीतम ने इसकी धुन बनाई, मयूर पुरी ने गीत लिखा, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने गाया है।

अगला फरमाइशी नगमा फिल्म टशन से है। उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने इसे गाया है। कौसर मुनीर ने लिखा, विशाल शिखर ने धुन बनाई। फरमाइश करने वालों के नाम बताएंगे इस गीत के बाद।

फिल्म टशन के इस गीत को सुनना पसंद किया था छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्नील और अजय खिरोड़कर ने। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का फिर श्रीमती स्वाति बेबी स्वाति माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, माही, पूजा, शरद और पूरा माखीजा परिवार। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ही अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि और परी की पसंद थी। फिल्म टशन के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक।

हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम।

नमस्कार श्रोतागण, आशा करती हूँ हमारे साथ साथ आप भी इस महान ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे हैं। पिछली कथा में आपने सुना दमनक ने करकट को विष्णु रूपी धृष्ट कौलिक की कहानी सुनाकर ये बताया कि अगर कोई योजना सुनियोजित ढंग से की जाए तो वो अवश्य सफल होती है। अब आगे

0: भाई करखट, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है?
1: मित्र दमनक, तुम्हारा कहना ठीक है, फिर भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि संजीवक अत्यंत बुद्धिमान है तथा स्वभाव का क्रोधी भी हो गया है। मैं तुम्हारे प्रतिभा संपन्न होने में तनिक भी संदेह नहीं कर रहा हूँ, परंतु पिंगलक से संजीवक की मित्रता तोड़ने में तुम समर्थ हो सकोगे, इस पर मुझे संदेह है।
0: अरे करकट, अगर मैं असमर्थ हूँ तो भी मुझे समर्थ समझो।
1: क्यों भला?
0: बुजुर्ग कह गए हैं कि जहां पर पराक्रम काम ना आ सके वहां चतुराई से चाल चलनी चाहिए। अब देखो ना, जैसे काक ने उपाय के द्वारा सोने के एक हार से काले सर्प का विनाश किया था।
1: अच्छा।
0: सुनो, किसी स्थान पर एक विशाल वट वृक्ष था। उस पर काक दंपति निवास करते थे।
1: अच्छा।
0: उसी पेड़ की कोटर में एक काला विषधारी सांप रहता था। जब भी काक दंपति किसी शिशु को जन्म देते, वो सांप आकर उसे मार डालता। काक और काकी दोनों अत्यंत दुखी थे।
2: स्वाभाविक है।
0: एक बार उसने अपने मित्र श्रीगाल से कहा,
3: काक भाई, क्या हुआ? कुछ परेशान दिखाई देते हो, कुछ तो बताओ।
4: क्या कहूं, वो दुष्ट आत्मा काला सांप हर बार अपने कोटर से निकलकर हमारे शिशुओं को खा लेता है। उससे बचने का कोई उपाय बताओ जिससे हम चैन से रह सकें।
3: मैं समझता हूं काक भाई, जिसकी भूमि नदी के किनारे हो, जिसकी स्त्री पर पुरुष गामिनी हो और जिसका सांप वाले घर में निवास हो, वो व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? अतः उस पेड़ पर निवास करना प्राण संकट कारक ही है।
4: तो क्या हम अपना निवास बदल लें? परंतु वो सांप उधर भी पहुंच जाए तो हम उसे कैसे पराजित करें?
3: मित्र, इस विषय में आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस लोभी सर्प को उपाय द्वारा पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि अत्यधिक लोभ के कारण ही

0: एक वक्त छोटी बड़ी मछलियों को खाने के बाद भी केकड़े के पकड़ने से मृत्यु को प्राप्त हुआ।
1: कैसे?
0: किसी वन में अनेक जलचरों द्वारा भरा हुआ एक सरोवर था। उसमें निवास करने वाला एक वक्त वृद्धावस्था के कारण मछलियों को मारने में असमर्थ हो चुका था। अतः भूख से अत्यंत व्याकुल होकर वो रो रहा था। उसे रोता देखकर अन्य जलचरों और एक केकड़े ने उसके पास जाकर सादर कहा,
2: वक मामा, क्या हुआ? आप इस प्रकार आंसू क्यों बहा रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? 2 दिन से देख रहा हूं मैं, आप केवल आंखों में आंसू भरकर दीर्घ निश्वास ले रहे हैं। मामा, भोजन भी नहीं किया आपने, क्या बात है?
3: बस आप ठीक अनुमान लगा रहे हैं। अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, इस कारण मछलियों को खाने से वैराग्य ग्रहण करके मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अपने प्राण छोड़ने का व्रत लिया है मैंने, इस कारण समीप आई हुई मछलियों को भी मैं नहीं खा रहा हूँ।
2: परंतु मामा, आपके वैराग्य ग्रहण करने का क्या कारण है?
3: वत्स, मैंने इसी सरोवर में जन्म लिया है, यहीं पर वृद्ध भी हुआ। परंतु मैंने सुना है कि बहुत शीघ्र ही यहाँ 12 वर्षों के लिए सूखा पड़ने वाला है।
2: अरे परंतु मामा, ये आपने किससे सुना?
3: देवज्ञों से ज्ञान हुआ, यदि शनि रोहिणी से शकट का भेदन करता है तो इंद्र 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल की वर्षा नहीं करता। इसी सरोवर में थोड़ा ही जल है, यदि अनावृष्टि हुई तो यह शीघ्र ही सूख जाएगा, और होने पर सभी जलचर जिनके साथ में खेला बड़ा हुआ वे सभी जल के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। मैं उन सब का विनाश कैसे देख पाऊंगा, इसीलिए मैंने मरण व्रत लिया है।
2: मामा, क्या इन सब की रक्षा का कोई उपाय नहीं है?
3: उपाय तो एक है, परंतु पता नहीं सब सहमत होंगे या नहीं। इस समय सभी बड़े जल जीव छोटे जल जीवों को दूसरे जलाशयों में पहुंचा रहे, मकर जलहस्ती आदि बड़े जानवर तो स्वयं ही जा रहे, परंतु इस जलाशय के जलचर जैसे निश्चिंत होकर बैठे, इन सब का तो अवशेष भी नहीं बचेगा।
2: नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं, हम सभी भयभीत हैं, आप जैसा उपाय बताएंगे हम सब वैसा ही करेंगे। हाँ,
3: अगर तुम सब यही चाहते हो तो सुनो, इस जलाशय से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत गहरा जलाशय, चारों ओर कमल से सुशोभित, 24 वर्षों की अनावृष्टि से भी वो नहीं सूखता। यदि कोई मेरी पीठ पर चढ़े तो मैं उसे वहां पहुंचा सकता हूं।
4: ले चलो भाई, ले चलो भाई।
2: मामा पहले मुझे ले चलो
4: भैया, ले चलो
2: पहले मुझे, ले चलो मामा पहले मुझे, मामा पहले मुझे, पहले देखो मुझे पार ले चलो मामा।
0: दुष्ट मन से वह वक एक एक करके जलचरों को पीठ पर चढ़ाकर जलाशय के उद्देश्य से उड़ता और थोड़ी दूर जाकर एक बड़े से पत्थर पर ले जाकर पटक देता। फिर अपनी इच्छा अनुसार भोजन करने के बाद पुनः उस जलाशय में आकर जलचरों को नाना प्रकार से झूठी कहानियां सुनाता और सबका मनोरंजन करता। इस प्रकार उस दुष्ट वक की जीविका आनंद पूर्वक चलती रही। एक दिन
2: मामा, आपकी बात सबसे पहले मुझसे हुई थी और मुझे छोड़कर आप दूसरों को पहले ले जा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा, आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मेरी प्राण रक्षा करनी ही पड़ेगी।
3: ठीक ही तो है, मछलियों का मांस खाते खाते मैं ऊब चुका हूं,
1: चलो आज इस केकड़े का

0: सांस खाता हूँ।
1: क्यों नहीं वत्स, क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
2: मामा, वो जलाशय कितनी दूर है? आप मेरे भार से थक गए होंगे। ये नीचे शिला पर हाड़ मांस के टुकड़े कैसे पड़े हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? क्यों मामा, और कितनी दूर रह गया है?
0: अरे मूर्ख केकड़े, दूसरा जलाशय है ही कहाँ? अरे ये तो मेरी चाल है, मेरी जीविका का साधन। आज तेरी बारी है, अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले। तुझे भी मैं इसी पत्थर पर पटक पटक कर मार डालूंगा।
2: दुष्ट, तूने उन निर्बल जलचरों के साथ जो अन्याय किया उसका फल तुझे भोगना ही होगा। ले दुष्ट, ले मर।
3: केकड़े ने अपने मुंह से उस बक के गले को इस प्रकार दबाया कि उसके प्राण निकल गए। फिर वो केकड़ा मृत बक की ग्रीवा को लेकर धीरे धीरे उस सरोवर के पास लौटा। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सी मछलियों को खाकर भी वह बक बुद्धिमान और सजग केकड़े के हाथों मारा गया। उस सांप को मारने का कोई उपाय सोचना होगा।
4: तो आप ही बताएं भद्र, वो दुष्ट कैसे मारा जा सकेगा?
3: आप किसी ऐसे नगर में चले जाएं जहां राजा निवास करता हो। वहां जाकर राजा, उसके मंत्री अथवा किसी भी धनी व्यक्ति को थोड़ा असावधान पाते ही उसके स्वर्ण हार को उठा लें और ले जाकर सांप की कोटर में डाल दें, जिससे हार लेते समय वो मारा जाए।
5: श्रीगाल की बात को सुनकर काक उसी समय लक्ष्य की ओर उड़ गया।
4: उस तालाब पर किसी रानी की सवारी विश्राम कर रही है। वाह, महारानी अपनी सखियों के संग जल से खेल रही हैं। आभूषण एवं वस्त्र किनारे रखे हैं। यही मौका है, मैं ये रत्नहार उठा लेता हूं। हाँ, पकड़ो मुझे। मैं इन्हें चकाते हुए उसी पेड़ तक ले जाता हूं। हाँ, अब मैं हार को सांप के कोटर में डाल देता हूं।
6: और फिर राज सैनिकों ने उस वृक्ष पर चढ़कर उस कोटर का निरीक्षण किया।
7: अच्छा,
6: तो वो काला सांप अपने फन को फैलाकर बैठा हुआ दिखाई पड़ा।
7: ओहो,
6: सैनिकों ने लाठी के प्रहार से उस सांप को मार डाला।
7: अरे वाह,
6: और रत्नहार लेकर चले गए। और उस दिन से वो काक दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगा।
8: सच है तमन्ना, बुद्धि द्वारा जो किया जा सकता है पराक्रम द्वारा नहीं किया।

0: जा सकता।
1: हाँ,
0: बुद्धिमानों के लिए कोई भी समस्या असाध्य नहीं होती। किसी घने जंगल में भासुर नाम का सिंह रहता था। वो अपने बल का प्रयोग सारे जंगली जानवरों पर करता था। वो जिसे चाहता मारकर खा जाता था।
1: अच्छा,
0: फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसके भय से सभी त्रस्त थे। एक बार सभी जानवरों ने तय किया कि जाकर सिंह से निवेदन किया जाए। तो ये सोचकर सभी सिंह के पास पहुंचे। बूढ़ा रीछ बोला,
2: स्वामी, हम सब आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं, कृपया उसे स्वीकार करें।
3: आप आदेश करें रीछ दादा, मैं तो सदैव से ही जंगल की भलाई चाहता हूँ।
2: जानता हूँ बेटा, तुम ही तो हमारे रक्षक हो। प्रतिदिन अनेक वन्य पशुओं को मारने से क्या लाभ, क्योंकि आपका पेट तो केवल एक ही जीव से भर जाता है। अगर हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक एक नियम तय कर लिया जाए कि यहाँ बैठे बैठे आपके पास हमारे बीच से आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु जाति क्रम से आ जाया करेगा, इस प्रकार बिना किसी श्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हमारा सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। आप राजा के इस धर्म का पालन करें।
3: आप सबका कहना ठीक है, इससे मुझे तो आराम मिल ही जाएगा, परंतु यहाँ बैठे बैठे नित्य एक पशु नहीं आया तो मैं सबको मार के खा जाऊंगा।
2: आप चिंता ना करें महाराज, आपका भोजन प्रतिदिन समय पर आप तक पहुंच जाया करेगा।

0: अब तो सिंहराज के मजे ही मजे हो गए। बिना किसी श्रम के नित्य ही भोजन पहुंच जाता और उधर पशुओं ने भी चैन की सांस ली। वन्य पशु निर्भय होकर जंगल में विचरण करने लगे। नित्य एक पशु जाति क्रम से, चाहे वो वृद्ध हो, वैरागी हो, शोकग्रस्त हो, दोपहर के समय उस भासुर के भोजन के लिए उपस्थित हुआ करता था। एक बार एक खरगोश के जाने का अवसर आया। उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु नियम के अनुसार उसे जाना ही था। वो धीरे धीरे चलने लगा।
1: हाय, मेरे सारे पूर्वजों को इस भासुर के पेट में जाना पड़ा। मेरे कितने साथी भी चले गए। पता नहीं कब तक इस सिंह को भोग लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुष्ट भासुर ही मर जाए? अरे, ये क्या है? ये तो कुआं है। इसकी तो मुंडेर भी नहीं है। देखूं तो, अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। अभी मैं ध्यान नहीं देता तो डूब जाता। उधर भासुर तो प्रतीक्षा में बैठा होगा। क्या करूं?
2: धोखा, मेरे साथ धोखा। दिन ढल गया, अभी तक मेरा भोजन नहीं आया। भूख से मेरी बुरी दशा हो गई है। रीच दादा के कहने पर मैंने इस बात को माना था। अब अगर कुछ ही क्षणों में मेरा भोजन नहीं आया तो मैं कह डालूंगा। वो कौन है? ये तो खरगोश है, ये एक शशक। कल सुबह तक मैं इस जंगल को

0: जीवनहीन कर दूंगा।
1: प्रणाम महाराज, मैं आ गया।
0: बड़ा एहसान किया, सुबह से भोजन की प्रतीक्षा में बैठा हूँ, दिन ढलाया, अब आ रहे हो, क्यों इतनी देर लगाई?
1: बस महाराज, आ गया, यही क्या कम है? अधिक विलंब ना करें, अब मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करें।
0: भोजन? तुम एक कृशकाय खरगोश से मेरा क्या होगा? अब मेरे कोप से इस वन को कोई नहीं बचा सकता।
1: स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही अन्य वन प्राणियों का। विलंब का तो कुछ और ही कारण है।
0: शीघ्र कहो, जब तक तुम मेरे मुंह के अंदर नहीं चले जाते, उसके पूर्व जो कहना है कहो।
1: स्वामी, जाति क्रम से आज मेरे जैसे लघुकाय जीव का अवसर समझकर रीज दादा ने मेरे जैसे 5 खरगोश को भेजा था, परंतु रहने दीजिए, आप क्रोधित हो जाएंगे।
0: शशकादम, क्रोधित क्या भी कम हूँ? शीघ्र बताओ, वो 4 खरगोश कहाँ गए?
1: अब धीरज रखे महाराज, बताता हूँ। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे शक्तिशाली सिंह ने हमें रोक लिया था। गुफा से निकलकर उसने हमें पकड़ लिया और बोला, इष्ट देव का स्मरण कर लो। मैंने जब कहा कि हम अपने स्वामी भासुर के पास उनके भोजन के लिए जा रहे हैं, तो उसने कहा, ये बात सत्य नहीं है, इस वन का राजा तो मैं हूँ, तुम सभी वन्य प्राणियों को मेरे साथ नियमबद्ध होकर रहना चाहिए।
0: क्या कह रहे हो? उस दुष्ट ने ऐसा कहा, उसे यमराज का भी भय नहीं।
1: और उसने ये भी कहा कि भासुर तो चोर है, यदि वे यहाँ का राजा है तो मैं इन 4 खरगोशों को जमानत के रूप में रखता हूँ, और तुम जाकर उस भासुर को बुला लाओ। हम दोनों में से जो शक्तिशाली होगा वही इस वन का राजा होगा, और वही इन खरगोशों को भी खाएगा। उसी की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, मुझे देर होने का यही कारण है। अब आपकी क्या आज्ञा है स्वामी?
0: यदि तुम्हारा कहना सही है तो उस चोर और दुष्ट सिंह को मुझे शीघ्र दिखाओ, जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं।
1: धन्य है आप महाराज, धन्य है, आप तो वीर क्षत्रिय हैं, परंतु आपका ये शत्रु दुर्ग का आश्रित है। दुर्ग में रहने वाला शत्रु अजय होता है, आप तो दुर्गहीन हैं। दुर्गहीन राजा शीघ्र ही शत्रुओं के वश में आ जाता है।
0: कोई बात नहीं, फिर भी मुझे उस सिंह को दिखाओ।
1: स्वामी का कहना यथार्थ है, फिर भी मैंने देखा है वह बलवान है, उसकी शक्ति की जानकारी लिए बिना जाना उचित नहीं है।
0: तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन है? वो दुर्ग में हो चाहे शक्तिशाली हो, मुझे उसे दिखाओ।
1: यदि ऐसी बात है तो स्वामी चले।
0: हाँ।
1: आइए। इधर से महाराज। हाँ, बस आ गया। अरे, यही तो था, गया कहाँ? महाराज, आपके तेज को कौन सह सकता है? दूर से ही आपको आते हुए देखकर वे चोर से अपने दुर्ग में घुस गया होगा। आइए अभी दिखाता हूँ।
0: कहाँ है उसका दुर्ग? दिखा।

उस खरगोश ने रास्ते में जो कुआं देखा था उसी को दूसरे सिंह का दुर्ग बता दिया। फिर वो मूर्ख बहासुर कूप के अंदर झांक कर गर्जना करने लगा। गर्जना की उस कुएं में दुगनी प्रतिध्वनि हुई, साथ ही अपनी छाया को भी देखा। उसी प्रति

पिंप को शत्रु समझकर उस पर कूद पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। और फिर खरगोश के सकुशल लौटने पर सारे वन में उत्सव का माहौल हो गया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। आगे दमनक और करकट ने क्या किया ये सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता 29 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर नरेंद्र मोदी ऐप या माई गाँव ओपन फोरम के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की स्वीडन यात्रा आज से शुरू हो रही है। दौरान वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। रतलाम के पास आज तड़के तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बी के एक कोच में आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है और प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। और IPL क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 से धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली में शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। खाना खजाना में गर्मी स्पेशल बेल और फालसी का शरबत बनाना जानेंगे और साथ ही उनके फायदे, और सुनेंगे मधुर संगीत। बहनों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें दूर संचार का विशेष स्थान है। दूर संचार का अर्थ है दूर बैठे लोगों तक सूचना, संदेश, चित्र और ध्वनि को पहुंचाने की व्यवस्था। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो इसके प्रमुख माध्यम हैं। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। यह दिन हमें बताता है कि संचार के आधुनिक साधनों ने दुनिया को कितना छोटा और जीवन को कितना सरल बना दिया है। पहले के समय में किसी व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। लोग पत्रों का सहारा लेते थे और उत्तर आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन आज मोबाइल फोन इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बात की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग ने तो दूरियों को लगभग समाप्त कर दिया है। परिवार और मित्र एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। दूर संचार क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। आज विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा और शैक्षिक वीडियो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंचने से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। सखियों, स्वास्थ्य सेवाओं में भी दूर संचार का बड़ा योगदान है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीज घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं में तुरंत संपर्क होने से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में भी दूर संचार ने जीवन को आसान बना दिया है। ऑनलाइन भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग ने समय और मेहनत दोनों की बचत की है। आज लोग घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि दूर संचार के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। इंटरनेट का सही उपयोग करना, साइबर अपराधों से बचना और बच्चों को सीमित एवं सुरक्षित उपयोग के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। बहनों, दूर संचार क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। हम तकनीक का उपयोग समाज और मानवता के विकास के लिए करें। सही दिशा में उपयोग किया गया संचार देश की प्रगति और लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बन सकता है। बहनों, अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम, जिम्मेदारियों और सुविधाओं के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूलते जा रहे हैं। यही लापरवाही आगे चलकर अनेक बीमारियों का कारण बनती है। इन्हीं बीमारियों में एक गंभीर समस्या है रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों का अभाव इस बीमारी के मुख्य कारण हैं। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह हृदय रोग, किडनी की समस्या और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी में तेज धूप, अत्यधिक तापमान और पानी की कमी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है। ऐसे समय में रक्तचाप बढ़ने या घटने की समस्या भी सामने आती है। इसलिए इस मौसम में स्वयं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सखियों, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव अपनाने चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर योग और व्यायाम करना, समय पर भोजन करना, अधिक नमक और तले हुए भोजन से बचना तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
साथ ही मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए परिवार के साथ समय बिताना और पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है। थोड़ा समय खुद को दीजिए, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर और मन के लिए निकालें तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्तचाप की समय समय पर जांच भी आवश्यक है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन का सही आनंद ले पाएंगे।

सखियों, अब बात करते हैं उस खास विषय पर जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। यह अपील उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में कही। हम एक एक करके सबके विषय में बात करते हैं और एक विशेष बात जो हम महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। सखियों, पहली बात, विदेशी यात्राएं कम करें, क्योंकि विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए भारत में पर्यटन को बढ़ावा दें। पेट्रोल डीजल की बचत करें, भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए लोगों से सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और कम ईंधन उपयोग की अपील की गई। एक बात ऐसी जो सीधे हम मातृशक्ति से जुड़ी है, वो है सोना। सोने के गहने हमारी पहली पसंद होते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक वर्ष तक सोना ना खरीदें, क्योंकि सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। विदेशी उत्पादों की बजाय स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज्यादा करना है, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और स्थानीय उद्योग मजबूत हो। और साथ ही खाने के तेल का उपयोग कम करें, प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें, यानी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील की गई। बहनों, इन बातों का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के कारण तेल और आयात महंगे हो रहे हैं। ऐसे समय में यदि देशवासी थोड़ी सावधानी बरतें तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रह सकती है। तो हम सब देशवासियों को जो बातें हमारे हित में कही गई हैं, उन पर अमल करना चाहिए। सखियों, प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत को जानने, समझने और सहेजने की प्रेरणा देता है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे हमारे अतीत की जीवंत कहानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का अमूल्य खजाना है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश के संग्रहालयों में हजारों वर्षों पुरानी मूर्तियाँ, हस्तलिपियाँ, हथियार, सिक्के, चित्रकला, लोककला और

स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक अनमोल वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। बहनों, आज आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त है, जिसके कारण इतिहास और विरासत के प्रति रुचि कम होती दिखाई देती है। ऐसे समय में संग्रहालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संग्रहालय बच्चों और युवाओं को अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संघर्षों से परिचित कराते हैं। जब हम किसी ऐतिहासिक वस्तु को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है। हमारी धरोहरें केवल पुरानी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूर्वजों की सोच, कला, मेहनत और जीवन शैली का प्रतीक हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करे और उनके संरक्षण में योगदान दे।

सखियों, अब बात करते हैं गर्मी वाले मौसम की। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि वह सहन नहीं हो पा रही। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर पर उसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। अधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी और लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में विशेष सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम कुछ सरल उपाय अपनाएं तो गर्मी की लपट से आसानी से बच सकते हैं। गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है। इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इससे बचने के लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू पानी का भी पर्याप्त सेवन करना चाहिए। ये पेय शरीर को ठंडक देने के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जब आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, तब धूप सबसे अधिक तेज होती है। इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए, और बाहर जाना है तो चेहरे को सूती कपड़े से ढकें, सिर पर टोपी या गमछे का उपयोग करें, आंखों पर धूप का चश्मा लगाएं, धूप में अधिक देर तक ना रहें। सखियों, गर्मी में शरीर को हवा मिलती रहनी चाहिए, इसलिए ढीले, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इनसे पसीना जल्दी सूखता है, त्वचा को आराम मिलता है। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी सोखते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। गर्मी में भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। ज्यादा मसालेदार, तला भुना और भारी भोजन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इस मौसम में आने वाले तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। छोटे बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं। उन्हें धूप में अधिक देर तक ना रहने दें और समय समय पर पानी या तरल पदार्थ देती रहें। यदि किसी व्यक्ति को तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखें, तो हो सकता है उसे लू लग गई हो। यदि ऐसा महसूस हो तो तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर उसको पानी पिलाएं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहनों, गर्मी का मौसम कठिन अवश्य होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर इससे सुरक्षित रहा जा सकता है। बहनों, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। आज हम बना रहे हैं गर्मियों का अमृत, बेल और फालसे का शरबत। तो पहले नोट कीजिए बेल का शरबत बनाने में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए एक पका हुआ बेल, 4-5 गिलास ठंडा पानी, स्वादानुसार चीनी, थोड़ा काला नमक और साथ ही चाहिए भुना जीरा पाउडर। सबसे पहले बेल को तोड़कर उसका गूदा निकाल लें। गूदे को पानी में डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसल लें। अब इस मिश्रण को छलनी से छान लें ताकि रेशे और बीज अलग हो जाएं। अब इसमें चीनी मिला लें। स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक, भुना जीरा पाउडर डाल लें और ऊपर से थोड़े बर्फ के टुकड़े भी डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा बेल का शरबत बनकर तैयार है। इस शरबत को आप बच्चों को और बुजुर्गों को, सभी को दे सकती हैं, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है, थकान और कमजोरी दूर कर शरीर को ताजगी प्रदान करता है। सखियों, ये तो हुआ बेल का शरबत। अब जानते हैं फालसे का शरबत। बहनों, फालसा छोटे आकार का बैंगनी रंग का फल होता है, जिसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है। इसका शरबत बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। फालसे का शरबत बनाने के लिए

हमें चाहिए एक कप फालसे, 3 से 4 गिलास ठंडा पानी, काला नमक और थोड़ी सी चीनी और कुछ पुदीने की पत्तियाँ। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आप फालसों को एक साफ पानी से धो लें और अब अलग से पानी लेकर उसमें फालसों को डाल दें और हाथ से अच्छी तरह से उनको मसल लें और अब इस मिश्रण को छन्नी से छान लें। अब इसमें चीनी, काला नमक और पुदीना मिला लें और बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। फालसे का शरबत शरीर को तुरंत ठंडक देता है। यह विटामिन से भरपूर होता है। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे हृदय के लिए फायदेमंद होता है और साथ ही रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। सखियों, इस गर्मी के मौसम में आप इन्हें जरूर बनाइए, खुद भी पीजिए और परिवार को भी पिलाइए। और देखिए सखियों, बातें करते करते समय निकल गया, पता ही नहीं चला। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे रामाधीन आर्या के गाए लोकगीत।

और ज्यादा आसान हो गया। इसकी सबसे अधिक सफलता दिखाई दी कोरोना काल में, क्योंकि इसके माध्यम से ही लोगों ने अपने रोजगार को जारी रखा, लोगों ने रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त किए, चाहे वो शॉपिंग सेक्टर हो या फिर बिजनेस सेक्टर। बल्कि तो इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि के लिए अब अहम बन चुका है। ईमेल चैटिंग, वीडियो और वॉइस चैटिंग आदि से हजारों किलोमीटर की दूरियां सिमटकर अब चंद सेकंड के फासले में बदल गई हैं। बरसातियों, विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई वर्ष 1865 में शुरू हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। तभी से पूरे विश्व में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2005 में यूनाइटेड नेशन महासभा में इसे सूचना दिवस के तौर पर घोषित किया गया था। बल्कि तो विश्व दूरसंचार दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। संचार की इस तकनीक से आज घर में बैठे लोग अपनों से जुड़े हैं, ये सर्वश्रेष्ठ बात है। बल्कि संचार के बदलते माध्यम में आज डिजिटल कम्युनिकेशन की बड़ी भूमिका रही है। स्कूली शिक्षा से लेकर दूर बैठे विदेशों में परिजन वर्क फ्रॉम होम सहित अन्य कार्य सिर्फ घर बैठकर कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की हर संभव मदद कर रहे हैं। लोगों का उपचार भी ऑनलाइन किया जा रहा है। बल्कि ये दूरसंचार की ही क्रांति है जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की गिनती अब विश्व के कुछ ऐसे देशों में होती है जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। इस चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में श्री 420 फिल्म का ये प्यारा सा गीत। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: एक दाना।
1: बाल साथियों, अभी आपने सुना श्री 420 फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। बाल मित्रों, सदियों से धरती पर सबसे मेहनती जीवों में से एक मधुमक्खियां लोगों, पौधों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती रही हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाकर मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता न केवल प्रचुर मात्रा में फल, मेवे और बीज पैदा करते हैं, बल्कि अधिक विविधता और बेहतर गुणवत्ता भी प्रदान करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान मिलता है। परागणकर्ताओं के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बल में तो इस दिवस को मनाने के लिए 20 मई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जोंसा का जन्म वर्ष 1734 में हुआ था। जोंसा स्लोवेनिया मधुमक्खी पालकों के परिवार में से थे, जहाँ ये एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है जिसकी परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पहली बार ये दिवस 20 मई वर्ष 2018 को मनाया गया था। बल में तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की सुरक्षा के लिए उपायों को मजबूत करना है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने और विकासशील देशों में भूख को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम सभी परागणकों पर निर्भर हैं और इसीलिए उनकी गिरावट की निगरानी करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना महत्वपूर्ण है। बाल मित्रों, मधुमक्खी पालन दुनिया भर में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाल मित्रों, आज मधुमक्खियां परागणकर्ता और कई अन्य कीटों की संख्या में कमी आ रही है। ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है, चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हों या चिंतित नागरिक हों। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं बाल मन से क्रम के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत। उनसे बात कर रहे हैं राजेंद्र अहिरवार।
2: नमस्कार बाल मित्रों, बाल मन से क्रम में एक और नन्हे मेहमान हमारे बीच हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका?
3: कृष्ण नामदेव।
2: कृष्ण, कहाँ से आए हैं आप?
3: ग्राम पोस्ट देरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से।
2: ग्राम पोस्ट देरी से आए हुए हैं कृष्ण। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए हुए हो, कैसा लग रहा है आपको?
3: हमको तो अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा लग रहा है। तो आज क्या कुछ सुनाने वाले हो?
3: आज हम देशभक्ति रचना सुनाएंगे।
2: देशभक्ति पूर्ण रचना, ठीक है, सुनाइए कृष्ण।
3: भेदभाव आपस के

0: सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो। ई जीवन को कौन भरोसो जियो, देश के लाने काम देश के आजे हो तो नाम अमर हो जाने। काम देश के आजे हो तो नाम अमर हो जाने। सुख दुख अपने मीत समझ अपना आए के चलो, अपने भीतर वाले खामन आए के चलो। सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो। करो संकल्प प्यारे अब को अनपढ़ ना रह जावे। करो संकल्प प्यारे अब को अनपढ़ ना रह जावे। अक्षर ज्ञान सिखा दो अब को ऊठा ना लगावे। अक्षर ज्ञान सिखा दो अब को ऊठा ना लगावे। असली मानव धर्म यही अपनाए के चलो। असली मानव धर्म यही अपनाए के चलो। अपने भीतर वाले खामनाए के चलो। सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो। सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो।
1: बहुत अच्छा गीत आपने बुंदेली में सुनाया है कृष। किस क्लास में पढ़ते हो कृष?
0: मैं फोर्थ में पढ़ता हूँ।
1: फोर्थ में पढ़ता हूँ। आपकी स्कूल का क्या नाम है?
0: शासकीय हाई स्कूल देरी।
1: हाई स्कूल देरी में पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कृष क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख कर?
0: मैं पढ़ लिख कर IPS बनना चाहता हूँ।
1: IPS बनना चाहते हैं भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? और खूब मन लगा कर पढ़ना होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं कृष?
0: मुझे मैथ अच्छी लगती है और इंग्लिश अच्छी लगती है।
1: मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हो आप, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
0: मैथ में पढ़ते हैं सवाल लगाना, जो हमारी मैम हमारी बुक में से बताती हैं, और इंग्लिश में पोएम पढ़ना, लेसन पढ़ना, ये अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है कृष। और क्या सुनाने वाले हैं कृष?
0: रामचरितमानस पर आधारित।
1: रामचरितमानस पर आधारित एक रचना है, चलिए सुनाइए
0: हमें।

0: खोज रामायण।
1: बहुत अच्छी रचना आपने क्रेश सुनाई है हमें, रोज सिखाती रामायण। रामायण पढ़ती हो क्रेश आप?
0: हाँ पढ़ता हूँ।
1: रामायण पढ़ती हैं, कैसा लगता है आपको जब भगवान राम जी के विषय में आप पढ़ते हो, कैसा लगता है आपको?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि रामचंद्र भगवान ने पापियों को मारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैसा संदेश उन्होंने दिया कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
0: हाँ।
1: और सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ये रामायण हमें सिखाती है, इसलिए हमें किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए सभी के लिए समान रूप से काम करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा क्रेश आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छा बताया, आपने ड्रीम के बारे में हमें बताया, बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए क्रेश।
0: धन्यवाद।
2: बाल साथियों, अभी आपने सुना बाल मन से क्रम के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान को, उनसे बात कर रहे थे राजेंद्र अहिरवार। बाल साथियों, हम आगामी 21 मई को श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले श्री राजीव गांधी जी की आगामी 21 मई को है पुण्यतिथि। राजीव जी का जन्म बाल साथियों 20 अगस्त वर्ष 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। वे मात्र 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई। उच्च शिक्षा हेतु वे विदेश गए और वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आपकी संगीत में बहुत रुचि थी और फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। जल्दी ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। बाल मित्रों, राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे अपनी माँ को सहयोग देने हेतु वर्ष 1982 में राजनीति में आए और लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 31 अक्टूबर वर्ष 1984 में इंदिरा जी की हत्या किए जाने के बाद वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में भारत की क्षमता विकसित करने में सक्रिय रूप से कार्य किया। आपको भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। आपने आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार किया और विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों की ओर ध्यान दिया। बाल मित्रों, 21 मई वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव प्रचार के दौरान आत्मघाती हमलावरों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। मरणोपरांत वर्ष 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाल साथियों, श्री राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व सज्जनता, मित्रता और प्रगतिशीलता का प्रतीक था। लगभग एक दशक के छोटे से राजनीतिक जीवन में राजीव जी एक अमिट छाप छोड़कर भारत से विदा हो गए। बाल मित्रों, हमारे पर्यावरण में अनेकों पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि पाए जाते हैं जो सब मिलकर हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। इन जीव जंतुओं में कुछ न कुछ खास बात पाई जाती है। अगर आप इन रोचक तथ्यों और जानकारियों को जानेंगे तो यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। तो चलिए, रोचक जानकारी में आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। बाल मित्रों, गिरगिट एक ही समय में अपनी दोनों आँखों को अलग

अलग दिशाओं में घुमा सकता है। गिरगिट की जीभ उसकी कुल लंबाई से लगभग 2 गुनी लंबी होती है। बाल मित्रों, इतनी छोटी सी दिखने वाली चींटियाँ अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। घरेलू चींटियाँ 7 वर्ष तक और रानी चींटियाँ 15 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, जबकि चींटियाँ कभी सोती नहीं हैं। क्या आपको पता है बाल मित्रों कि पतंगे का खून सफ़ेद रंग का होता है और इनका पेट भी नहीं होता है। टैपवॉर्म एक प्रकार के कीड़े होते हैं बाल साथियों, जिनकी लंबाई आधा इंच से लेकर लगभग 20 फुट तक भी हो सकती है। ड्रैगन फ्लाई जो एक प्रकार की बड़ी मक्खी होती है, उसका जीवन मात्र 20 घंटे का होता है। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली माइडॉस नामक मक्खी को दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी माना गया है। बाल साथियों, क्या आपको पता है कि फ्लेमिंगो नाम का पक्षी केवल तभी खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो। बाल मित्रों, केवल चमगादड़ ही एक ऐसा ममल्स है जो उड़ सकता है। हम आपको बता दें बाल साथियों कि गिलहरियां लाल रंग नहीं देख सकती और एक भूखा चूहा अपनी पूंछ भी खा सकता है। वुड पीकर नाम का पक्षी, जिसे हम कठफोड़वा कहते हैं, 1 सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है। बाल साथियों, हमिंग बर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। तितलियां वस्तुओं का स्वाद अपने पैरों से चखती हैं। बाल साथियों, एक मधुमक्खी 1 पाउंड शहद बनाने में लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है। मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों में से केवल 4 प्रजातियां ही शहद बनाने का काम करती हैं, और आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा तय की गई दूरी धरती के लगभग 2 बार चक्कर लगाने जितनी होती है। और इनके लार्वे छत्ते के अंदर रहते हैं, जो कि 6 तरफ से मोम का बना होता है। शहद के छत्तों में एक रानी मक्खी ही अंडे देती है। ये तो थी रोचक जानकारी। और बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय भी हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टन के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। ये बात उन्होंने आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन कार्य में कही। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के रूनी लिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। राज्य के 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30। युववाणी कार्यक्रम 5:02 पर, ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे बुंदेली समाचार और चर्चा। साथ ही 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। 8:15 कार्यक्रम डगर विकास की, विषय है पीएम योजना। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। और रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में हम आपको सुनवाएंगे विवेक सोनकर की बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने। और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे। और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर, राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और ज़िला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मंच है गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मंच है गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं?

0: करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की। उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
1: मराठी
0: मराठी में,
1: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के।
0: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी,
0: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हम आदतें फटाफट करते थे
1: जी,
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
1: यस
0: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: वाह वाह,
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही,
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज़्यादा था आइडिया, मद्रासी फिल्म की तरह ज़्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके 2-4 नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
1: हाँ ये कौन आए।
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका, उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा 2 मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया,
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं अब साफ प्रॉब्लम आ गई हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक

0: लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट अमन की बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पर, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड। गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे आ जाओ, सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर कर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूँगा तेरी, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था, तो वहाँ पे थे और मुझे उन्होंने कहा, वहाँ पहुँचे हम तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: तो बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब ये है कि डेटें तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटें, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है थोड़ी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे। और फिर सब ये हो गया ऐसे। मतलब क्या कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना।
0: हाँ
1: हीरोइनों को देखो।

0: तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
1: वाह वाह।
0: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या कोई गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूसडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
1: जी जी जी जी।
0: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
1: क्या
0: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
1: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
0: एकदम।
1: वाह वाह वाह।
0: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
1: और ऋषि कपूर की यादें?
0: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की।
1: हाँ।
0: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार।
1: हाँ।
0: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
1: जी,
0: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
1: जी।
0: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया। घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता, ऐसे नहीं ट्रायल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था सब करवाता था, और एंड तक उसने जब यश जी ने

0: श्रोताओं नमस्कार। 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम न्यूज़ हेडलाइन से।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी नीदरलैंड यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है और दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है। उन्होंने जल संसाधन, सेमीकंडक्टर इनोवेशन, रक्षा, सतत विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए नवाचार आधारित देश की समग्र विकास की यात्रा में दूरसंचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 का कल का जला हुआ कोच लूनी रीछा स्टेशन पर पहुंच गया। FSL की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जांच कर रही है। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखे हैं। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा एक और विषय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें, पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात। क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर। साथ ही दोस्तों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस पर। दोस्तों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, जिसमें दूर संचार ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह संचार ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। इसी महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 17 मई सन 1865 को हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग बढ़ाना तथा डिजिटल असमानता को कम करना है। दोस्तों, दूर संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। पहले समय में संदेश भेजने के लिए पत्र, दूतों का सहारा लिया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था। लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सुविधाएं दूर संचार की ही देन है। दोस्तों, सूचना समाज का अर्थ है ऐसे समाज से जहाँ ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से होता है। आज इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं और व्यापारी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथियों, यदि इंटरनेट और दूरसंचार सुविधाएं ना होती तो जीवन बहुत कठिन हो सकता है। हालांकि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डेटा चोरी और इंटरनेट की लत जैसी समस्याएं समाज को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए तकनीक का उपयोग सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करना बेहद आवश्यक है। भारत में भी डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंच पा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यह देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस आधुनिक युग में संचार और सूचना तकनीकी के महत्व को दर्शाता है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।
1: हेलो हेलो,
2: हाय

0: देखो ना कैसा मौसम है।
1: आ जाओ ना।
0: ना बाबा ना, यही तो मुश्किल है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है हमारे आज की बात के अगले विषय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह रोग धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। यह बीमारी हृदय, मस्तिष्क, आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो हृदयघात, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याएं

हो सकती हैं। दोस्तों आज के समय में उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं। अत्यधिक नमक का सेवन, तेलीय भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मानसिक तनाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक कारणों से भी ये बीमारी हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में लोगों को शारीरिक रूप से कम सक्रिय बना दिया है, जिसके कारण युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों का निःशुल्क रक्तचाप परीक्षण किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप के बचाव के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल, सलाद, कम नमक का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से योग व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथियों पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हमें स्वयं जागरूक होने के साथ साथ लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच करवाए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट

चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। साथियों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही। उनमें 7 बातें प्रमुख रही। पहली, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। विदेश यात्रा टालने की अपील की। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग पर जोर देने को कहा। खाद व केमिकल का उपयोग कम करने को कहा। स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया। साथियों पेट्रोल डीजल की कम खपत से हमारा ही फायदा है। यदि हम वाहनों का उपयोग सीमा में करें तो पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी। इससे पेट्रोल डीजल हम काफी हद तक बचा सकते हैं। साथियों इससे न सिर्फ हमारा बल्कि पर्यावरण का

अभी बहुत फायदा होगा, अर्थात प्रदूषण कम होगा। दोस्तों साथ ही इसके पीछे का एक और कारण विदेशी मुद्रा का बचाव भी है। दोस्तों यदि आप पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभप्रद है। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारी आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। मोबाइल ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग मोबाइल एडिक्शन अर्थात मोबाइल की लत कहलाता है। यह समस्या आज बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस करना और हर समय मोबाइल का उपयोग करते रहना। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने तक इसका उपयोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो और चैटिंग ने लोगों को मोबाइल का आदि बना दिया है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालने लगी है। दोस्तों मोबाइल की लत का सबसे बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल देखने से आँखों में दर्द, सिर दर्द, नींद की समस्या होने लगती है। लगातार मोबाइल चलाने से गर्दन और पीठ में दर्द भी होने लगता है। साथियों देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक मोबाइल

उपयोग करने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी भी उत्पन्न होती है। साथ ही मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। कई छात्र पढ़ाई छोड़कर घंटों तक मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और परीक्षा परिणाम प्रभावी होते हैं। साथियों, मोबाइल की लत से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। समय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और गेम से दूर रहना चाहिए। बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग करते समय उन पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही लाभप्रद है। हमें तकनीक का गुलाम बनने की बजाय उसकी समझदारी से उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवन और अच्छे संबंध, उज्जवल भविष्य के लिए मोबाइल एडिक्शन से बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाश

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: कवि हेमंत देवलेकर,
11: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
12: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
13: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

गीत गाता चल। इस फिल्म का गीत अभी आप जसपाल सिंह के स्वर में सुन रहे थे, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिलसिला से, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत है शिवहरी का और शब्द जावेद अख्तर के।

फिल्म अब्दुल्ला का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के स्वर को धुन में ढाला आर डी बर्मन ने और स्वर से सजाया मोहम्मद रफ़ी ने। और अब सुनिए फिल्म जख्म का गीत अलका याग्निक के स्वर में, संगीत एम एम प्रेम का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुनिए स्पॉटलाइट रात 9:15 पर, नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रमों में सुर्खियों में रात 8:00, डगर विकास की रात 8:15 पर, देशभक्ति फिल्मी गीत शाम 6:10 पर, लोक संगीत में कृष्णा नायडू को सुनिए शाम 6:30 पर, सुगम संगीत शाम 6:45 पर, कलाकार दीप्ति रॉय। कृषि जगत में प्राकृतिक रूप से सामान्य स्वास्थ्य लाभ विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी से वार्ता शाम 7:21 पर। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम और अब सुनिए कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रमों में सुनिए विश्व दर्पण 10:10 पर, पब्लिक स्पीक रात 9:30 पर। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। उर्दू कार्यक्रम आईना 9:30 पर, जिले की चिट्ठी 10:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन में 11:00 से। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम आज कल शाम 6:40 पर, सुर्खियों में रात 8:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में वंदना में भक्ति संगीत 6:15 पर, चिंतन 6:30 पर, आलेख पंडित भगवतीधर वाजपेयी का और वाचक स्वर माधवी येंडे का, श्री रामचरितमानस कान 6:35 पर, कृषि सामिकी में मछलियों के रोग विषय पर जानकारी 6:45 पर, गुड मॉर्निंग जबलपुर का आकर्षण होगा कहानी अपने गांव का मनुष्य, कहानीकार शिकुंदन सिंह परिहार और समय 7:20। लोक रसधार में हेमराज चढ़ार और हरि राम भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत 9:00। वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी 10:05 पर, सारंगा 10:20 पर। शाम की सभा में NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00। लोक संगीत में गोपाल यादव को सुनिए शाम 6:30 पर। कृषि जगत में कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक में बीज का भंडारण विषय पर डॉक्टर सुब्रता शर्मा को सुनिए शाम 7:21 पर। शास्त्रीय संगीत में सरोद पर राग चंद्रकोस रात 10:00, कलाकार पंडित अमसद अली खान। अमन भवन में फरमाइशी फिल्मी गीत रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली

अभी आपने महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म उपकार का गीत सुना, गीत गुलशन मेहता का और संगीत कल्याण जी आनंद का। अगला गीत फिल्म फना से, स्वर है महालक्ष्मी अय्यर का, संगीत दिया जतिन ललित ने और गीत लिखा प्रसून जोशी ने।

इस गीत के साथ ही देशभक्ति फिल्म संगीत संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसन्धौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्च देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः, हरित परिवर्तनं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः, रक्षा, अंतरिक्षं, जलवायु परिवर्तनं, जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षास्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः, यत् प्रमुखं अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चमस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय संबंधान नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34th संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई जी ओ

0: श्वः अपि प्रदत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बंडिवुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति, यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीरद्रवसंस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा द्वात्रिंशद्वारं माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। 55 वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिकवारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लोक संगीत में आज आप कृष्णा नायडू के गाए बुंदेली लोकगीत सुनेंगे। पहले सुनिए पारंपरिक होली गीत स्वर कृष्णा नायडू का।

इसके साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे थे इसमें कृष्णा नायडू के गाए कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज आप इसमें सुनिए दीप्ति राय की गाई चंद गसलें।

इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज आप इसमें सुन रहे थे दीप्ति राय की गाई चंद गजलें। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, शाम के 7 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउद डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
3: तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे, बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन हैं, उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफ़ी बड़े सीईओस को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले 2 बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये
4: गए हैं, इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
4: प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु, भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में वाघ देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। आज विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों को विश्व दूरसंचार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, संचार क्रांति ने विभिन्न माध्यमों से दूरियां समेटकर विश्व को परिवार जैसा बना दिया है, जीवन सहज हुआ है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं पहल करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
4: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या मायगांव ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12431 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में एक निजी रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 में शामिल हुए। उन्होंने यहां लगाई गई विकास व वैचारिक प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
2: कम से कम दुनिया का भय भला नहीं किया, रोटी भी नहीं मिली, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी चली गई। अमेरिका जैसे देश आए, हमारे एक हाथ में रोटी है, एक में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि भारत जिस पश्चिम के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहा है, क्या वो पश्चिम सुखी है? तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जरा अपने देश की तरफ भी तो देखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम राष्ट्र समाज जीवन की रचना करके देश को सुखी बना सके, लोगों का कल्याण कर सके।
4: प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। सीहोर में आज अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुना जिले में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर उज्जैन सागर रीवा छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बू जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। खंडवा में जनजातीय वर्ग के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान कल से शुरू होगा। सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए नागरिकों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बैतूल में बाजार की जीवनदायिनी सापना नदी के भवानी घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनन बारे सबै किसान भैया भोजीहरू ख तुलसा बिन्ना कि हात जोड के राम राम। भैयाहरू बिन्नाहरू बेजा गर्मी है, खेती किसानी में मुत के काम रहते। अब कल हम घूमत घामत कक्का के खेत गए। कक्का मजे से रेडियो में जानकारी सुनत थे। हमने कही काय कक्का का हो रहो है, का कर रहे हैं? तो कक्का कछु नोट करत थे। हमने कही कक्का का नोट कर रहे? अब कक्का आर्मी में तो रिटायर, लिखवे पढ़ने में तो उम्दा है ही है कक्का, अब खेती किसानी में भी अब लगे रहे थे रिटायर के बाद। तो कक्का ने कही बिन्ना इमें नई नई जानकारी आत है, सो हम उहे नोट कर रहे हैं। नोट करवे के बाद जोन चौपाल में अच्छी जानकारी होती काम की, वे हमारे काम की आ जाती हैं और उसे हम खेती किसानी कर लेते हैं। उम्दा हमें उमें फ़ायदा भी हो रहा है। हमने कही कक्का बड़े होशियार हो, हमारे जितने सुनवे वारे हैं चौपाल में सभी सुन के अपनों अपनों काम ऐसे ही कर रहे हैं। कक्का ने मुद के गन्ना लगाए हते। अब बढ़िया से कक्का ने कही बैठो बिन्ना, गन्ना निकलवात हैं, पिया जइयो। सो हमने कही हाँ कक्का, घर के गन्ना हैं, सो बड़े मीठे गन्ना हमने पिए, बड़ो उमदा लगो। गन्ना पियत पियत दिमाग में आई, हमने कही काय कक्का गन्ना तो पिला दो, पे आप उदास उदास काय हो? कक्का ने कही का बताइए बिन्ना, मोड़ा तो हमारो जो है पोता बाहर है और हम और ज़्यादा जा नहीं पाते आए और उसे बदकाव हो जाते, पर दिल नहीं भरते आए, लगाते चले जाइए। हमने कही बस कक्का इतनी सी बात? तो कहने लगी काय बिन्ना का इतनी सी बात का है? हमने कही देखो मोबाइल धरे हो? उन्हें कही हाँ। हमने कही लाओ, उन्हें हमें हाथ में मोबाइल धरो। हमने बढ़िया वीडियो कॉलिंग लगाओ। हमने कही कक्का देखो जो तुम्हारो पोता और जो तुम दो ही आमने सामने। अरे कक्का देखे वह बढ़िया बातचीत करन लगे, वे दो इतने खुश भाई कि का बताइए। अब मोड़ा तो होशियार है तो पे वह इतना ना हतो कि कक्का जे ऐसो कर ले हैं। अब वे दो ही बातचीत करन लगे। हमने कही क्या कक्का हो गई बात? कक्का बड़े खुश कहन लगे बिन्ना बड़ो उम्दा करो आपने, आ गई और देखो हम और पहले तो शहर से चिट्ठिया अगर डालते सो उम्हें इत इंतजार करते, डाकिया आओ सो सबरे दौड़ के ऊखे लंगा आ जाते। मनु टेम बदलो, अब घरन घरन दूर संचार के माध्यम है और देखो ऑनलाइन वर्क भी हो रहे हैं आजकल, कहत नहीं है वो वर्क फ्राम होम। हमने कही हाँ कक्का जे तो हो ही रहे हैं, सब घरन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापार दूर संचार के माध्यम से कहूँ भी कछु भी काम आप और कर सकत हो, और शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार और प्रशासन जैसे क्षेत्रन में जे दूर संचार तो उम्दा है। और देखो कक्का तो बड़े खुश कि आज तो उनको बदकाव हो गओ और मोबाइल से देखो उम्दा काम भी हो रहे हैं। आज हमारो मोड़ा है बेन में जात तो अब हमें वह पैसे तो देने हैं। तो सो हमने कही कि ऑनलाइन को जमाना है, हमने उखे दे दें। और तो और सब्जी भाजी सब कछु आप मोबाइल से अपने मोबाइल से रुपया डारो, उखे मोबाइल में पहुँच जात है, तो है ना कितनी उम्दा बात। कक्का ने कही हाँ जे तो है कि सब्जी से लेके हर कछु खरीद बिक्री अपन ऑनलाइन कर सकत है, जो सुविधा हो गई है, और रेडियो से मुद्की जानकारी आप और के मिल जात है। आज इते कल अपनो रेडियो भी दूर संचार को उम्दा माध्यम आए। सो हम तो जे ही कह रहे हैं कि कक्का तो सुन रहे हैं बिन्ना भोजी हरो भैया हरो, सुनत रहो दिल से जुड़े रहो, अज जुड़वे खो माध्यम आए, और हमें अवसर और प्रकृति को बिल्कुल नहीं भूलने हैं, और संचार विकास को तो संभव है, माध्यम है ही है। दूर संचार दिवस पे आज हम जे ही कहवो चाह रहे हैं कि दूर संचार के मुद्दे लाभ हैं, पे कछु चुनौतियां भी हैं जैसे साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डेटा चोरी, सोशल मीडिया की लत, इनसे अपन के सावधान रहने हैं और सावधान रह के अपन के इस्तेमाल करने हैं, सही तकनीक और जिम्मेवारी से उपयोग उपभोग करने हैं, जहाँ से हम सुरक्षित रहें। और सबसे उम्दा बात जा है कि आज के युग में फटाफट सब कछु अपन ओरे चाह रहे हैं और टेम की कमी है, आपाधापी में जल्दी से आसान को अपन ओरे अपनाते हैं। तो नए युग में जे जरूरी आए सुविधाएं हमारे काजे है, जोन भी अपने भैया भोजी हरे सुन रहे हैं आज विश्व संचार दिवस में अपन जे ही पढ़ लें,
जेले कि हम उम्दा से काम कर हैं, नई नई योजनाएं अपना है और जोन अपने इतने जोन योजना बताई जात है उहे सोई अपना है। और तो और अपने भैया भोजी हरन से हम मिल के बोल बतकाव कर लेते हैं तो हमाओ जी बड़ो तर्र हो जात है। और चौपाल में जितने भैया भोजी कक्का काकी हरे बैठे हैं ना, बेसोई एक दूसरे से बोल बतकाव करके और बड़े उम्दा से अच्छे बढ़िया गान तान सुनाते हैं, अपनो बोल बतकाव अच्छो करत है। मानो आपसी भाईचारा तो अच्छो लगते ही है। और देखो तो सिया शरण भैया भी बैठे हैं, बेका कह रहे हैं सुनो।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर

0: मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: हाँ तो भैया हरो, देखो आज विश्व संचार दिवस भी आए और अपन ने विश्व संचार दिवस को बतकाव कर लो। अब कक्का से उनकी नाती की वीडियो कॉल में तो बतकाव हो गओ, तो कक्का तो खुश हो गए। कक्का ने कही बिन्ना का कि अपनो मन खराब कर ले थे। हमने कही काय का हो गओ, कहीं बात तो हो थे उनको मन खराब, पड़ोस में उनकी सहेली रहे थे सो उके संगे सोई जाके वे नेह मेह कछु कछु खा पी लेते हैं। हमने काकी हंसन लगी, हमने कही काय काकी का हो गो, काय हंस रही है? तो वे कही कक्का को देखो वे कछु न कछु टोकत रहे थे, कहत हैं खूब चलो भुनसरा से उठो, हैं उठा देत हैं और कहत हैं चलो उच्च रक्त चाप तुम्हें है। अब कछु न कछु तो कक्का पीछे लगे रहे थे। हमने कही काय काकी कक्का तो सही कहत हैं। तो काकी ने कही देखो खान पियन की बात है तो बोई बोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कभू कभू कछु को मन हो जाता है। और कक्का ने देखो जो इतने सारो अथान धर दो, खड़ी मूंग धर दई, खड़ो चना धर दो, अब जो मुद के अनाज हैं रोज रोज अच्छो नहीं लगती है, जे मेथी धरिए फूलों के। अरे हमने कही काय काकी तुम किस्मत वाली हो, कक्का इतने उम्दा मिले तुम्हें और कितनी अच्छी बात है। तो कहीं बिन्ना खा खा के मन तो उब जाते हैं। सो हमने कही हाँ जा बात तो है कि खा खा के मन उब जाता है और तुम अपनी सहेली के संगे काय बाहर जाके खा लेती हो। सो कहीं बिन्ना हम का बताइए, कक्का कहने लगे कि काय कछु ऐसी तरकीब बताओ कि हम जे घरन घरन की कहानी तो हो गओ कि कछु न कछु कोनो न कोनो तो बीमार है और हम काका ये दइए कि जे ठीक हो जाए। हमने कही बिल्कुल चिंता ना करो कक्का, खान पान की बात है सो प्रभा बिन्ना हम आए ते आ जाई हैं, सो वे कछु न कछु अच्छी बात तो लेके आती हैं और काकी जरूर जब आप बना बना के दे हो, जब कछु रख हो नई नई चीज़ तो वे खाएं और उम्दा उनको स्वस्थ भी रहे। तो उनने कही हाओ जे बात तो जल्दी बताओ। तो हमने कही चलो सुनो प्राकृतिक रूप से सामान्य स्वास्थ्य लाभ तो जे बता रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी भैया और प्रभा बिन्ना इनसे काका बतकाव कर रही हैं, सुनो।
2: किसान भैया हरो, आज अपने स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर आर के तिवारी जी। आप शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में काया चिकित्सा प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपको हमारी चौपाल में स्वागत है। डॉक्टर साहब राम राम।
3: राम राम। राम राम बहन जी, राम राम।
2: किसान भैया हरो, आज प्राकृतिक रूप से सामान्य स्वास्थ्य लाभ
3: जी
2: ये विषय पे जानकारी दे बिकलाने डॉक्टर साहब आए थे अपने स्टूडियो में हाजिर हैं। तो हम आपसे सबसे पहले हम जो पूछ चाहते हैं डॉक्टर साहब कि प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य लाभ के लाने कौन कौन सी चीजें होती हैं जैसे कि अपने सब किसान भैया हरें स्वस्थ रह सकें।
3: जी, जैसा कि किसान भाई सब जानते हैं कि हर घर में रसोई होती है।
2: हाँ।
3: और हर रसोई में भोजन के लिए अलग अलग मसाले का प्रयोग होता है।
2: बिल्कुल।
3: जैसा कि आप जानते हैं कि हर रसोई में दालचीनी है, हल्दी है, काली मिर्च है।
2: हाँ।
3: अदरक, मेथी, लौंग, जीरा, हींग, ये सभी चीज़ें हर रसोई में विद्यमान रहती है।
2: बिल्कुल।
3: और इन सब का चिकित्सा में महत्व होता है।
2: हाँ।
3: किसान भाइयों, आपको मालूम है कि अगर आपके पेट में गैस बन रही है या आपको सर्दी खांसी की बीमारी है।
2: हाँ।
3: तो आप यही अजवाइन को जो है भूज करके थोड़ा उसमें गुड़ मिला करके यदि आप सेवन कर लें या केवल अजवाइन को भून करके कुनकुने पानी से सेवन कर लें तो आपकी गैस की बीमारी में बहुत लाभ होता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजवाइन इतनी उपयोगी चीज़ है कि यदि बार बार सर्दी खांसी जुकाम होती है तो इसका काढ़ा बना करके उसको उबाल करके इसका पानी पीने से सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा आराम होता है। किसान भाइयों, अपने रसोई में हींग होती है। हींग अपन इसलिए देते हैं कि लगता है कि हम तड़का लगा रहे हैं।
2: हाँ।
3: लेकिन वह तड़का नहीं है, वह गैस बीमारियों के लिए हींग बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से आपकी रसोई में मेथी दाना होता है, तेज पत्ता होता है।
2: बिल्कुल।
3: ये सब चीजें, मेथी आप जानते हैं शुगर के आजकल बहुत पेशेंट हो रहे हैं। हम लोग

0: उसको रसोई में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वह शुगर की बीमारी में काम करती है। इसी प्रकार से जहाँ तक लहसुन की बात होती है, लहसुन इतनी अच्छी चीज़ है कि आजकल मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी, बीपी, इसके बहुत ज़्यादा रोगी हर जगह दिखाई देते हैं।
1: हाँ
0: अगर इसकी 2-3 कलियाँ हम इसकी अगर पीस करके और थोड़ा सेंधो नमक के साथ अगर इसको मिला करके यदि अपन सेवन करें तो इससे बीपी, शुगर में बहुत कंट्रोल होता है और यहाँ तक कि मोटापा में काफ़ी लाभ करता है।
1: हाँ
0: तो इस तरह से हमें बता सकते हैं आपको कि हमारी रसोई में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं जिनका कि प्रयोग करके हम स्वास्थ्य में लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने तो बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें बता दें जैसे कि हम और खुद ही अपनी रसोई में देखा थे कि मसालदानी के डिब्बा में से ऐसी कौन चीज़ न रही जो उनके आपने नाम न लाए हों, चाहे
0: जी
1: वह
0: जी
1: काली मिर्च हो, चाहे जीरा हो, चाहे
0: जी
1: हींग
0: जी
1: हो,
0: जी
1: चाहे दालचीनी हो बे।
0: जी जी जी
1: तो इन सब चीज़ों के तो लाभ आपने बताए, मानो हम जा भी जानबू चाहते हैं कि प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहवे के लाने खान पान कैसो रखना चाहिए हमें
0: जी
1: किसान भाइयों ने बता दे
0: जी
1: आप।
0: आहार का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है,
1: हाँ
0: इसलिए इस आहार को हम इस दृष्टिकोण से देखें कि प्राकृतिक रूप से हमें शाकाहार, फलाहार, दुग्धाहार, अंकुरित आहार, हरी सब्जियाँ, सलाद, फलों का रस, इन सब चीज़ों का सेवन नियमित रूप से हम लोगों को करना चाहिए।
1: हाँ
0: और शाकाहार का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है,
1: अच्छा
0: क्योंकि शाकाहार का सेवन करने से जो विशेष रूप से शाकाहार के साथ साथ जो है साबुत आजकल अनाज या जो दालें होती हैं जिसको कि हम रात में भिगो देते हैं, अंकुरित दाने, अंकुरित अनाज हम सेवन करते हैं,
1: हाँ
0: तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है।
1: हाँ
0: उससे हमें क्या होता है कि जो फाइबर्स मिलते हैं उससे हमारा पेट बहुत अच्छा साफ रहता है। तो शाकाहार में भी से जैसे अपन ने बताया बैगन है, हरी बीन्स है, फूल गोभी है, गाजर है, खीरा, टमाटर, ब्रोकली, पत्तेदार हरी सब्जियां, इन सब का सेवन करना चाहिए। तो शाकाहार का तो इसमें आहार में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इनका अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करता है तो आजकल जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जैसे आप देख रहे हैं प्रोस्टेट के कैंसर हो रहे हैं, अनेक प्रकार के हार्ट की, शुगर की सब बीमारियाँ होती हैं, तो इन सब का शाकाहार का या प्राकृतिक आहार का सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसमें एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे कि जो अपन अनाज सेवन करते हैं विशेष रूप से साबुत अन्न का हमें सेवन ज़्यादा करना चाहिए, दालों को भिगो लें, अंकुरित करके आहार के रूप में हम पहले भी बताए इनका सेवन अपने को करना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण, इन सब चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। वैसे भी आप गाँव देहातों में आप देखते हैं कि गाँव के लोग चना को रात में भिगो देते हैं और सवेरे फिर उसको थोड़ा सा नमक और उसमें मसाला मिला के प्याज डाल करके सेवन करते हैं और वो काफ़ी मजबूत होते हैं। पुराने ज़माने के लोग आप देखते होंगे चने का नियमित रूप से सेवन करते हैं, लेकिन आजकल ये फास्ट फूड का समय चल गया है, जंक फूड का समय आ गया है, पिज्जा बर्गर का आ गया है, तो आहार के संबंध में हम यही कहेंगे आपसे कि ये फास्ट फूड का हमें सेवन नहीं करना है, हमें पुराने समय का जो रीति रिवाज का, जो हमारे घर का जो प्राकृतिक रूप से आहार है, हमको उसका सेवन करना है, सलाद का सेवन करना है, खीरा खाना है, पपीता खाना है और नींबू का रस निचोड़ करके उसको पानी को पीना है, तो इन सब के सेवन से हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताई कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनके लाने से ही आपने कछु उपाय बताए, मानो हम फिर से आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोगों को कैंसर, मधुमेह और बीपी की बीमारियां बहुत सता रही हैं, बहुत फैल रही हैं जी। तो इनसे बचवे के लाने कछु प्राकृतिक रूप से उपाय ऐसे जो नियंत्रित कर सकें जी बीमारियों है।
0: जी, इसके लिए मैडम मैंने चिकित्सा कराने बहुत सारे मरीज आते हैं, शुगर के आते हैं, बीपी के आते हैं, हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, हमने उनमें देखा कि आजकल एक इस विशेष रूप से औषधियां या दवाइयां जो भी वो ले रहे हों तो उसके साथ साथ में यदि हम आहार में प्राकृतिक रूप से आहार जो कि हर घर में रहता है जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हम नुस्खा उनको बताए दे रहे हैं कि जैसे कि एक मिक्स आटा जिसको बोलते हैं, आजकल तो कई कंपनियों के बने बनाए आते हैं, लेकिन किसान भाई लोग जो हैं जैसे 5 किलो गेहूं, उसमें 1 किलो मक्का, 1 किलो बाजरा, 1 किलो ज्वार, 1 किलो देसी चना, आधा किलो सोयाबीन, और व्यक्तिगत रूप से जो मैंने अनुभव किया है कि मैं अपनी तरफ से उनको 250 ग्राम उसमें अजवाइन और 250 ग्राम मेथी, कुल मिला करके ये समान अनुपात में हो जाते हैं और इसका मिक्सचर बना करके और इसकी रोटी जो है हम रोगियों को सेवन कराते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में या चिकित्सा मैंने देखा कि इस जो नुस्खा है इससे बनी हुई चपाती या रोटी का सेवन करने के पश्चात उनकी शुगर में बहुत कमी आई, उनको बहुत उनके नियंत्रण में शुगर रही और उनको आशातीत लाभ हुआ। इसलिए सभी किसान भाइयों को मैं आगाह करता हूँ कि जो नुस्खा मैंने बताया है इसको शुगर वगैरह से बचने के लिए या जिन्हें शुगर हो गई है उसको नियंत्रण में रखना है, इस मिक्स आटे का प्रयोग करें, उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा।
1: हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने मोटे अनाजों की बात कही तो ये मोटे अनाज की कछु और आप जानकारी दो हमारे किसान भाइयों के कौन सो मोटो अनाज कहा उत है और के सेवन करवे से आहार में लेवे से काका फायदा हो।
0: जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज के समय में मोटे अनाज का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। मोटे अनाज जो होते हैं स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण से बहुत महत्व होते हैं। मोटे अनाज को कई नामों से जाना जाता है।
1: हाँ।
0: इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है, पोषक अनाज भी कहा जाता है और उन्हें श्री अन्न भी कहा जाता
1: है। श्री अन्न भी कहा जाता है।
0: जी तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मोटे अनाज पहले प्राचीन काल में बहुत समय से चले आ रहे थे, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण किसान भाई हमारे इससे भटक गए और इसको छोड़ दिए और आज जो बीमारियां हो रही हैं यही जो नए जमाने के जो आहार हम सेवन करते हैं, जो जंक फूड सेवन करते हैं, उसके कारण से हमें कई तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। इसके संबंध में उनको हम बताना चाहेंगे कि जो मिलेट्स होते हैं इसमें मुख्य रूप से आठ चीजें होती हैं, आठ प्रकार के जो मुख्य अनाज होते हैं इसमें, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सांवा, कंगनी, चीना और कोदो। ये जो अन्न होते हैं कुछ हमारे नॉर्थ इंडिया में होते हैं, पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, और कुछ साउथ इंडिया में होते हैं।
1: हाँ।
0: और इन अनाजों की विशेषता होती है कि बहुत कम पानी लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है।
1: हाँ।
0: और इन अन्नों की पोषक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इन्हीं सभी अनाजों में बहुत कम मात्रा में शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब चीज पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनका सेवन करने से ये जो अनेक प्रकार की वर्तमान में जो बीमारियां हो रही हैं उनसे बचा जा सकता है, जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज, बीपी, शुगर, इन सब चीजों से इनमें बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, चलत चलत अगर और कछु आप स्वास्थ्य के लाने हमारे किसान भाइयों के बताओ चाहें कि वे अच्छी लंबी उम्र और निरोगी काया कैसे पाएं।
0: जी जैसा कि आपने कहा कि और स्वस्थ रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए, हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या इन सब का समावेश किया गया है। स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को, हर व्यक्ति को प्रातः काल में समय पर उठ जाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से कम 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल करना चाहिए। अगर साइकिल चलाने में सामर्थ्य है तो साइकिल चलाना चाहिए। इनसे क्या होता है कि आज के समय में जो वर्तमान में जो बीमारियां हो रही हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं, उसमें ज्यादातर आजकल मोटापा, हार्ट डिसीज, थायराइड, बीपी, शुगर एक बहुत आम बीमारी हो गई है और इनसे हमें बचना है तो इसके लिए अपनी दिनचर्या सही रूप में होनी चाहिए। सही समय पर भोजन करें, पानी कम से कम 2 लीटर पिएं, फाइबर युक्त डाइट लें और नींद पूरी लें, तनाव न लें तथा ज्यादा ऐसा मत सोचें कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, उस चक्कर में तनाव नहीं लें, उनकी दिनचर्या स्वस्थ रहे और उनका शरीर निरोगी रहेगा। ऐसे में
1: बिल्कुल और निरोगी रहवे के लाने हम सुई जाके अपने किसान भाइयों से के रोग निरोधक नीम है कड़वो इसको स्वाद औषधि गुण से है भरो रखियो हमेशा याद। और डॉक्टर साहब इतनी उम्दा जानकारी लेके आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Hey guys, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
5: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
6: और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
7: हाँ तो भैया, काकी ने तो उम्दा से समझ लाओ और उनको खान पान भी उम्दा होगा, और आज उच्च रक्तचाप दिवस पे अपने नज़दीक में स्वास्थ्य शिविर लगो हतो, तो बे तो उते गई संगे संगे अपनी संगी सहेली साथी जोन भी सबरी जिज्जी बिन्ना भौजी आ रहे उन्हें सोई लेत गई। अब बढ़िया उम्दा उनने जांच कराई। और भैया आज की भागम भाग जिंदगी असंतुलित खान पान और अधिक नमक को सेवन, जंक फूड, व्यायाम की कमी, तनाव, धूम्रपान, नशा जे आदतें उच्च रक्तचाप के कारण तो होते ही हैं। और पहलू तो बड़ो बड़े हते सो ज़्यादा आजकल, पहले तो कहत नहीं है कि बड़े बुजुर्ग हैं बे बीमार हैं, जिनके इतने हैं बे बीमार हैं, पे आजकल युवा भी कम नहीं है, बेसोई ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनमें सोई इकी ज़्यादा मात्रा हो रही है, इके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक जोन हो रही है, किडनी फेल हो रही है, और गंभीर बीमारियाँ भी मुदकी हैं जिनको नाम अपने मुंह पे आता ही नहीं है कौन कौन सी बीमारियाँ चल गई हैं। सो ऐसे टाइम पे इकी जांच जरूर करवात रहे, टाइम टाइम पे अपन के पतो चल जाए कि अपन के का बीमारी है, तो अपन और उचित खान पान, व्यायाम, योग, ध्यान और चिकित्सक भैया की सलाह जरूर लेते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड्डो धन आए, हमारे स्वस्थ रहें, अपने सपने तभी हम पूरे कर पे हैं, नहीं ता हमें का करने हैं, हमारा शरीर अच्छो ना रहें तो हम कछु ना कर पे हैं। सो आजकल हमें सावधान रहने हैं, उच्च रक्तचाप दिवस पे हम जो ही संदेश हम दे रहे हैं कि जागरूक रहें, सावधान रहें, जा से बड़ी बीमारी को नियंत्रित अपन कर सकें, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। और भैया देखो, कहत नहीं है कि स्वस्थ जीवन भलो, और गर्मियन के दिन तो बेजा चल रहे हैं, गर्मियन से सोई अपन के मुद को बचाव करने हैं, कहूँ भी जाएं उखी सुरक्षा जरूर अपना लें, कैसे कि लू लपट से अपन के बचाव करने हैं, तभी अपन और बच सके हैं। और देखो जे देवी सिंह दाहिया भैया का कह रहे हैं कि बिन्ना भोजी हरे जा तो रही हैं, महुआ भी हैं, और महुआ तो जरूरी है बिन वो उनके लाने, कैसे कि बे भी काम आता है, तो देखो भैया का कह रहे हैं।

हाँ तो भैया बिन्ना भोजी हरो, अब हो रही है चलबे की बिरिया, कल फिर हो रहे हो आप और उनसे मुलाकात, तब तक के लान तुलसा बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आप कृषि जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। सुर्खियों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
3: तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहां पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन हैं उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और सबसे बड़ी चीज ये कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है वहां पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जाकर के और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो जो अभी आर्थिक स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में उन्होंने, जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की और यही नहीं, इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी, उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूं और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
2: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
4: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है, लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तोहिन, की बात से बताया और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए, वहां करके एक बात कही कि WAH, जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इस पे काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है, जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहां पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर। मुझे याद है जब मैं वहां स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहां के ट्रेड मिनिस्टर थे लिफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर, 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के, के अंदर लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा। पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है, तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी, और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
2: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
5: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
2: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो एफटीए है ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
4: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ स्ट्रेट में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर। तो अब यह है कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए, और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा एक दो साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है।
2: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।
4: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं, खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे है, और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
2: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AI

0: AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति है आकाशवाणी भोपाल की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
2: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं हैं?
2: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
2: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके। और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
2: निश्चित रूप से हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है, या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमश्री योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
2: पीएमश्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, NID है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: पीएमश्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार, बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं, ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया जिसको हमारे स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड और जो वेस्ट मेटल को यूज करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, पीएमश्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
4: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले जाएगा।
5: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
0: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की।
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म चमत्कार का गीत अभी आपने सुना। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक। और अब सुनिए फिल्म दामिनी का गीत कुमार सानू और साधना सरगम के स्वर में। शब्द समीर के हैं और धुन नदीम श्रवण की।

फिल्म मनोकामना का गीत अभी आपने सुना बप्पी लहरी के स्वर में। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ @9 हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और

जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो
2: मुझे कोई

0: आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
0: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
0: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
0: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई, आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कलेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
0: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
0: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
0: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
0: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
0: अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं?
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है,

0: मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
1: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
2: ये मेरी डायरी है।
1: तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
2: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
1: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
0: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
1: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
2: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
1: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
2: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
1: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
2: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
1: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
2: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
1: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
2: पीजिए।
1: बुरा मान ली प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
2: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
1: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
2: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
1: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
2: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
1: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
2: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
1: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज।
2: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
1: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
2: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
1: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
1: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
2: बैठे रहो।
1: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
2: नहीं।
1: तुम्हें छू सकता हूँ?
2: नहीं।
1: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
2: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
1: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
2: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
1: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचा

0: बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब बासी हो चुकी
0: हैं। प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
0: अब मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ इसे क्षण उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जाते हो या नहीं?
2: सांत्वना,
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं, इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई। देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
0: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुम्हें? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
1: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
0: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
1: शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
0: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
1: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपी से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सचक इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
0: छग्न, ये छग्न है, इस छग्न से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: मम्मा, मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को। पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा। माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
4: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
4: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
4: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
4: धोखा तुम अब दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
4: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे।
0: बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
0: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
5: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
5: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरबजीत भाई, बधाई हो।
2: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
5: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं, यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
5: Oh, I'm sorry. मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
5: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक

0: बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
2: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
3: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
3: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
3: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया।
4: लाइए,
5: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
4: ये लीजिए।
2: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
3: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari styles. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival, Delhi, Pandit Ram Marathe Festival, Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav, Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav, Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar, Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के

0: प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his 2-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability, and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as water logging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।